0: मिसाल है,
1: वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया। सामने रेलवे स्टेशन था। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी? देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की। उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई। वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई। कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो। आपको क्या मिलता है? वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा? देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है। कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं? एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

25 साल के एक नौजवान ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हाल ही में ये खबर पढ़ी, मन बहुत दुखी हुआ। ये नौजवान आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट था, जानी मानी एमएनसी कंपनी में काम किया करता था। उसके दोस्त कहते हैं कि बड़ा ही सुशील और समझदार लड़का था। फिर ऐसा क्या हो गया? कहा जा रहा है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। आईआईटी और आईआईएम के पास ग्रेजुएट पर दबाव बहुत ज्यादा था, सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है ना। शायद सीनियर्स ने कुछ परेशान किया हो, हो सकता है उसकी जॉब खतरे में हो। अब सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इसके नीचे सोचने की जरूर जरूरत है दोस्तों। हर स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं आईआईटी या आईआईएम में पहुंच जाऊं तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। अब जिसे दोनों में एडमिशन मिल गया हो उसका तो कहना ही क्या। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आईआईटी और आईआईएम के अंदर भी भयंकर कॉम्पिटिशन है, खास करके नौकरियां पाने के लिए। मोटे मोटे पैकेजेस, पैसा ही पैसा, लेकिन मिलता कितने लोगों को है? और अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या होता है? पढ़ाई में अव्वल आना एक बात है और बाहर की दुनिया में जो होता है वो कुछ और। कंपनी में काम करते समय सिर्फ दिमाग नहीं, सोशल स्किल्स भी काम आते हैं। आप कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ये भी जरूरी होता है ना दोस्तों। अकेले आप कुछ नहीं करते, लोगों के साथ चलना ही पड़ता है। कुछ लोग काम बड़ी ईमानदारी से और गंभीरता से करते हैं, लेकिन उसका यश, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसा भी होता है कि जो बंदा पढ़ाई में अव्वल था, प्रैक्टिकल लाइफ में फिसड्डी हो जाता है। जिंदगी भर टॉप आने वाले जब फेलियर का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, तो एकदम हिल जाते हैं, क्योंकि आज तक तो ये एहसास हुआ ही नहीं था ना। अपने ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है और शर्मिंदगी भी बहुत होती है। ऐसे में क्या चाहिए आपको? एक अच्छा सच्चा दोस्त जिसके साथ आप दुख दर्द बांट सकें, बिना हिचकिचाहट, बिना झूठ फरेब के कुछ कह सकें। हर कोई समझता है कि मेरे जैसा दुखी इंसान तो कोई है ही नहीं। एक बार किसी से दिल खोलकर बात करके तो देखिए, वो भी अपनी राम कहानी सुना डालेगा। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसके पास घर में शांति नहीं है, जहां परिवार मिलजुल कर रहता है वहां सेहत नहीं है। जिसका शरीर A1 उसको रुपयों की किल्लत होती है। किसी की जिंदगी में एक ही समय पर सारे सुख होते तो नहीं। कोई तो संघर्ष आपको करना होगा, तो फिर उससे आंख मिलाकर क्यों ना कहें, चला जा, मुझे मंजूर है। अगर कोई फेल हो जाता है तो बड़ी निराशा होती है। दो चार बार हारना भी देखिए जरूरी है। कैरेक्टर कैसे बनता है बस इन्हीं हालातों में। एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, 12th फेल, अगर उसी का नाम 12th पास हो जाता तो पिक्चर में वो दम नहीं होता, दर्शकों से वो प्यार नहीं मिलता उस फिल्म को। लेकिन अपनी जीवन की पटकथा में हम चाहते हैं सीधी सीधी लाइन, केजी से पीजी, अच्छी नौकरी, सुंदर छोकरा छोकरी, लाइफ बस सेट हो जाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ईसीजी मशीन की रीडिंग देखी है? दिल की धड़कन ऊपर नीचे उसे सरकाती रहती है। अगर सीधी लाइन हो जाए तो बस आत्मा शरीर से मुक्त। तो अपनी लाइफलाइन के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं, छोटी छोटी खुशियों से ही जीवन को भरना होगा। ख्याल रखिए दोस्तों, डिप्रेशन एक नई महामारी की तरह उभर रहा है। काश कोई वैक्सीन आ जाती इसके लिए तो ये आत्महत्या के केस थम जाते। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अगर कोई आंसू आते हैं तो बहने दीजिए, टेंशन को अपने अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त ढूंढिए जिसके सामने अपना सब कुछ कहा जा सके। जिंदगी में सफलता ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। ईसीजी मशीन की ऊपर नीचे गिरती हुई चढ़ती हुई लाइनों को हमेशा याद रखें। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

तो दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।

बिना पाठ्यक्रम वाले जीवन की गणित। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, बस किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं। आज मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा मैथ्स की क्लास में टीचर से पूछता है, सर बीज गणित में बीज कहाँ होता है? टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरा हाथ खोलो। और जब बच्चा अपने लाल हाथों वाली हथेली आगे करता है तो उसे समझ आता है, बीज दिया जा चुका था, दिखता नहीं था पर था। बस वही पल जिंदगी का पहला बड़ा लेसन बन जाता है। हम सब जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं, रिजल्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है। हम ये भूल जाते हैं कि बीज हमेशा जिंदगी के नीचे होता है, वह अंधेरा होता है, इंतजार होता है और सबसे बड़ी बात सब्र होता है। ये संवाद ये कहना चाहता है कि हर चीज को ज्यादा सोचना जरूरी नहीं होता। हर बात का जवाब ढूंढने से पहले कभी कभी चिंतन छोड़ देना भी जरूरी है। जिंदगी की गणित कुछ ऐसी ही है, ये फॉर्मूला से नहीं एक्सपीरियंस से समझ आती है। सोचिए, हवा दिखती नहीं पर चलती तो हमेशा है, इज्जत दिखती नहीं पर जब चली जाए तो वो घर के रिश्ते भी हिला जाती है, विश्वास दिखता नहीं पर बिना उसके कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता, और भगवान वो भी नहीं दिखते पर उन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये संवाद भी यही कहता है, जैसे एग्जाम्स में कभी कभी बिना असल समझ के लंबे आंसर्स लिखकर नंबर आ जाते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी हम सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं, पर फर्क इतना सा होता है, एग्जाम के मार्क्स जिंदगी नहीं बदलते पर जिंदगी के बीज बदलते हैं। अगर बीज असली हो, मेहनत का, ईमानदारी का, पेशेंस का, तो फल भी असली होता है, चाहे थोड़ा लेट ही आए पर जब आता है तो गहरा होता है, टिकाऊ होता है। इस संवाद का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा विद्यमान होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपका बीज अभी जमीन के नीचे है। जिंदगी की गणित ना रटी जा सकती है ना शॉर्टकट से सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और कभी लगे कि कुछ दिख नहीं रहा तो बस इतना याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं और वही चीजें जिंदगी चलाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? सिंटू, सिंटू ने जवाब दिया, यार एक दुकान खोली थी उसने, लेकिन अब वो जेल में है। पिंटू, ओ पर ऐसा क्यों हो गया? सिंटू, भाई ने दुकान हथौड़े से खोली थी, उसे पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया। What?

दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने आप में ही एक मेटाफर। एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। ये कहानी है लेखिका अर्पणा की, जिनकी कहानियों में गहरापन है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी संजीदगी है जो दिल को छू लेती है। इस कहानी का केंद्र है एक औरत, उसका घर, उसकी तन्हाई और उसका डर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सरकारी मकान से। आंगन में एक तुलसी का पौधा है, जो बस पौधा नहीं बल्कि यादों का प्रतीक है। नरेटर बताती है कि वो उस तुलसी की पूजा नहीं करती, पर चाय में उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये छोटी सी बात ही कहानी का टोन सेट कर देती है, परंपरा और व्यवहार के बीच का अंतर। उसका रिश्ता आरएस हांडे से भी तुलसी की जैसा ही है, ना पूरी तरह पवित्र ना पूरी तरह सामान्य, एक अजीब सी जटिलता। घर के सामने एक बुढ़ा रहता है अकेला। नरेटर अक्सर उसे देखती है। एक दिन वो सोचती है, क्या मैं भी बुढ़ी होके ऐसी ही अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी कहानी भी इसी तरह खत्म होगी? यहाँ कहानी तन्हाई का साइकोलॉजिकल लेयर खोलती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम नरेटर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक साया, एक डर। वो दौड़ती है, साया भी दौड़ता है, उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है और अब वो पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि वो साया असल में उसका अपना ही डर था, या शायद उसी की परछाई। ये पल सिंबॉलिक है। कहानी ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने ही अंधेरों से भाग रहे होते हैं, अपने ही सवालों से, अपनी ही असुरक्षा से। और फिर आता है सबसे पावरफुल इमेज, दरवाजे। नरेटर एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। जैसे जिंदगी में हर प्रॉब्लम के बाद एक नया चैलेंज, हर सच के बाद एक और नया सच, और हर डर के बाद एक और गहरा डर। दरवाजों की एक लंबी कतार। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी लीनियर नहीं होती, एक रूम नहीं, एक कॉरिडोर में नहीं होती, जहां हर दरवाजा खोलने की हिम्मत चाहिए। हर दरवाजे के बाद जो मिलता है वो हमें थोड़ा और मैच्योर कर देता है, थोड़ा और तोड़ता है, थोड़ा और बनाता है। इसमें राजनीतिक संकेत भी है, सामाजिक तंगीत भी है, और सबसे गहरा एक औरत का अस्तित्व संघर्ष है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में एक दरवाजे पर रुक सकते हैं, या जिंदगी का नियम ही है एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। और शायद हिम्मत का मतलब यही है, दरवाजे खोलते रहना।

0: पे पहुंचेंगे।
1: करफिदा
0: जान को,
1: मारले
0: मैदान को,
1: रोक ले
0: आंधिया,
1: मोड़ दे
0: तूफान को,
1: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे,
0: दुश्मन को न छोड़ेंगे,
1: घुटने कभी न टेकेंगे,
0: मुड़ के न हम देखेंगे।
2: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
3: चीनू उदास बैठा था, तभी मीनू आया और पूछा, क्या हुआ चीनू, तू उदास क्यों बैठा है? चीनू बोला, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे पिछले 5 दिन से बैठा हूँ, ना तो शीतल आई ना ही छाया।

शरीर पर चिन्ह भी होते हैं पहचान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ शरीर पर बना हुआ डिजाइन नहीं बल्कि पहचान, आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। गोदना यानी ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटूइंग। इस चर्चा में बताया गया है कि देश के कई आदिवासी समुदायों ने शरीर पर बनाए गए चिन्ह सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के गोंद, बैगा, भील, कोरकू, मुरिया, कोल जैसे कई जनजाति समुदाय में गोंदना एक प्राचीन परंपरा है। इन समुदायों के लिए गोंदना उनकी पहचान है, एक जीवन भर का साथी। कुछ जगह देवी देवताओं का चिन्ह, पेड़ पौधों के आकार, प्राणियों के प्राकृतिक सूरज चांद तारे या पवित्र निशान शरीर पर गुदवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इस आर्टिकल में एक लोक कथा का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भोज में जब एक जनजाति के लोगों को पहचान के लिए अलग किया गया तब से गोंदना उनकी पहचान बन गया। यानी ये परंपरा केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न थी। आदिवासी समुदायों में लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद गोंदना गुंदवाना आवश्यक माना जाता था। ये शादी, जवानी और सामाजिक स्वीकृति का जुड़ाव है। कई संस्थानों पर ये भी विश्वास किया गया कि मरने के बाद सिर्फ गोंदना ही साथ जाता है, सोना चांदी कपड़े ये सब यहीं रह जाते हैं। गोंदना करने की ये प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है। सुइयों को बांधकर रंग भरा जाता है जो काजल, तेल या प्राकृतिक रंगों से तैयार होता है। दर्द होता है लेकिन उसे सहना परंपरा का हिस्सा है। कुछ स्थानों पर गोंदने के दौरान गीत भी गाए जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। महिलाओं के लिए गोंदना एक जीवित आभूषण जैसा माना जाता है, ऐसा गहना जो कभी नहीं उतारा जाता। आज के समय में जब मॉडर्न टैटू फैशन का हिस्सा बन चुका है, ये संवाद हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में टैटू सिर्फ फैशन नहीं था, ये इतिहास, धर्म, परंपरा और पहचान का प्रतीक था। ये शरीर पर सिर्फ बना एक चिन्ह नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ और मेरी जड़ें कहाँ हैं? आखिर में ये संवाद एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी परंपराओं को समझ पा रहे हैं या उन्हें सिर्फ फैशन तक सीमित करते हैं? क्योंकि कभी कभी पहचान कपड़ों से नहीं, शरीर पर बने चिन्हों से होती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। पिंटू बोला, यार मैंने आज बहुत काम कर लिया। उसके दोस्त संजू ने पूछा, कैसा काम भाई? तो पिंटू बोला, वही जो स्कूल में टीचर मना करती है। संजू पूछा, मतलब? पिंटू बोला, अरे सवाल पूछना।
1: संजना,
0: आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

दोस्तों, दुनिया में गेम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही हम हैरान रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखे खेल की, रबर बूट थ्रोइंग। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये सच में एक सीरियस स्पोर्ट है। ये खेल फिनलैंड से शुरू हुआ 1992 में। शुरुआत में लोग इसे मजाक या मनोरंजन के रूप में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन गया और आज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। इस गेम का बेसिक आइडिया सिंपल है, रबर के बूट को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। लेकिन दूर फेंकना ही काफी नहीं है, इसमें टेक्निक, बैलेंस और पावर ये सही कॉम्बिनेशन में जरूरी है। बिल्कुल जैसे हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है, वैसे ही रबर बूट थ्रोइंग में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर मोमेंटम क्रिएट करके बूट को फेंकता है। देखने में सिंपल है, लेकिन असल में काफी चैलेंजिंग है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टिसिपेंट को निर्धारित वेट और साइज का बूट दिया जाता है। कंपटीशन में सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल की इंटरनेशनल पहचान भी है, इंटरनेशनल बूट थ्रोइंग एसोसिएशन के थ्रू। इमेजिन, फिनलैंड के अलावा कई और देशों में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। आज सिर्फ ये एक लोकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि फिनलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ सीरियस और ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स तक सीमित नहीं होते, कभी कभी क्रिएटिविटी और मजाक से भी एक नई परंपरा बन जाती है। सोचिए, एक सिंपल सा रबर बूट जो आमतौर पर बारिश या खेत में काम आता है, वही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनकर सेंटर बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से गेम का नाम सुने, हो सकता है वो सिर्फ गेम ना हो, बल्कि किसी देश की सोच, क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी रबर बूट को तोड़ना भी एक गेम ही होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
2: गुस्से में हम ज्यादातर वो गलतियां कर बैठते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि छोटी सी बात बस बड़ी हो जाती है, सुलझी हुई बात उलझ जाती है और हमारे आसपास के कुछ लोग इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, वो हमें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ गलती करें। ऐसे में ज्यादा आनंद इस बात में है कि हम कोई रिएक्शन ही ना दें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपना सच कहें, अपनी जरूरत को समझें। अपना ध्यान रखने पर जोर लगाना कुछ खास नतीजे हासिल करने के लिए दूसरों पर दबाव डालना नहीं होता। दोस्तों, ये केवल अपने लिए खड़ा होना है बिना परवाह किए कि दूसरे क्या सोचेंगे। लेखक यंग प्यूब्लो कहते हैं, कई बार कम बोलना बहुत अच्छा होता है। हर विचार उपयोगी नहीं होता, हर भावना को शब्द देना कोई जरूरी नहीं है। बेहतर होता है कि हम अपनी रफ्तार कम कर लें और अपने विचारों को अपने नजरिए को स्पष्ट करें। हमारा अहम प्रतिक्रिया देता है, जल्दबाजी करता है, लेकिन भीतर की शांति सही दिशा में शालीनता से आगे बढ़ती है।
1: बने रहिए आरजे समीर के साथ।

रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे ना तो अकेले रह जाओगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती, बस समय समय की बात है। बगल की स्कूटी पर खूबसूरत लड़की हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगने लगता है।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ जाइएगा, रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है।

दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई।

इंसान भी अजीब है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वो सब बातें और इल्जाम इकट्ठे करना शुरू कर देता है।

जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो?
2: मनु ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ।
1: सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मनु ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
3: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे कि मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए।

ऊपर वाला मौज में आ जाए ना तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: कोयले की कहानी।
3: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए, ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
1: पकड़ पकड़ बम्बई बाओ बम्बई बाओ बम्बई बाओ,
2: पकड़ पकड़ बम्बई बाओ, 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा।
1: पकड़ पकड़ बम्बई बाओ 80-90 पूरे 100

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना?
1: है काका, आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन, तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका, मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी

0: उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा,
1: अरे ओ शंभू, ओ शंभू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चलो चलो चलो, हे हां,
2: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
3: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
4: सोने भी नहीं देता।
2: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठ ना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
3: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
2: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
3: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
2: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना, किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
3: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है?
5: मेरी समझ में नहीं आ रहा।
2: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
4: ओफो,
2: तब तेरी समझ में आएगा।
3: अच्छा जा जा जा जा, जा।
5: मुझे सोने दे।
2: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
0: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा, मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
1: हुर्रिया, हे हे हे, चलो चलो चलो, आ आ आ आ, हो हो हो।
6: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
2: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
6: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं, किसने किया ये सब?
2: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
6: और शंभू कहाँ था?
2: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
6: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
2: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
6: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
2: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
6: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
2: मेरे पास लाठी है ना,
6: हाँ।
2: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
6: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो,
2: चलिए काका, चल शेरू, आ।
0: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
6: शंभू, अरे ओ शंभू,
1: अरे ओ शंभू,
3: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया, सोने नहीं देता।
1: क्या है?
6: सोने नहीं देता। तुझे मैं सुलाता हूँ। उठ और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
7: आप मुखिया साहब, आप आपके खेत किसने उजाड़े?
6: मुझसे पूछ रहा है।
8: तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
7: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे किसी और के पशु घुसे होंगे।
9: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
7: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
6: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
7: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
6: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
7: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
6: अच्छा चल जा और देख। हाँ? आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना
7: जी,
6: किसी और के खेत में ना घुसे
7: जी।
6: आज तुझे छोड़ रहा हूँ
7: जी,
6: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
7: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
6: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
9: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
6: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
9: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू आ। इदा,
0: इदा, चल, चल, चल। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
10: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
7: काका।
10: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
9: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कान्हाराम चौहान, गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति

मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तांता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया।
और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो
राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंग।

या से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव, जहाँ।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आय किस तरीके से दुगनी हो, किस तरीके से बड़े, तो हमें क्या करना होगा। आय तभी दुगनी होगी जब हम आधुनिक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे, हम जैविक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं बार बार किसानों के लिए नई नई योजना के तहत जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय दुगनी हो। तो हमारे अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम अब 52 जिलों में प्राकृतिक खेती पर जोर देंगे। प्राकृतिक खेती पर जोर देना यानी हम किस तरीके से जैविक पद्धति से खेती करें, क्योंकि उनको भी सभी लोगों को एहसास होने लगा है कि अब हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम बदलते मौसम में हम अपने आधुनिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को दुगनी करें, क्योंकि हम वही परंपरागत खेती करते रहते हैं और वही बीज बोते रहते हैं जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। और खासतौर पर जब हम केमिकल भरी यानी रासायनिक खेती पर का जिक्र करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम अपनी मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें जो एहसास है उसको हम अब कैसे हम अपने खेती को एक आधुनिक पद्धति से करके अपनी आय में बढ़ोतरी करें। खासतौर पर छोटे छोटे उन्होंने टिप्स भी देते हैं, हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी हैं कि हमारे किसान साथी छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी इसमें कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजीविका के स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे आजीविका को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे ऐसे कुटीर उद्योग हैं जो हमारे किसान साथी, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमारे किसान साथी खेती के साथ साथ वो भी उद्योग कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज तीन सेगमेंटों पर बात करेंगे। पहला, हम किस तरीके से जो हमारे पेड़ लगे रहते हैं पेड़ के आसपास हम वर्मी कंपोस्ट लगाकर हम किस तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं। दूसरी बात, सीप। अब लोग सोचते हो कि मोती कहां से आते हैं, मोती की भी खेती होती है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी हम सेगमेंट हम लेकर आएंगे मौसम आधारित जानकारी भी हम लेकर आएंगे और खास तौर पर हम एक सफल व्यक्ति की कहानी भी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आपको सुनाएंगे। तो हम देर नहीं करते हैं और हम अपने श्रोता साथियों को बर्मी कंपोस्ट जो खेत के आसपास यानी वृक्ष के नीचे जो हम कंपोस्ट उगाते हैं कैसे उगाते हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बात है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छानकर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखे। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर ले। केचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपड़ा रेडियो अपनी बातें। और मित्रों अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम बर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपने खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खासतौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने ये घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब

0: कि सीप की खेती जो मोतियों की खेती रहती है वो किस तरीके से होती है, ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथी की नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टाइगर हिल 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम खेत खलियान में मौसम की जानकारी का। तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11

0: से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उड़द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लिड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी की पलटने वाले हल से कर दें, ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सके, तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोनोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरम फास 40 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो 6.0 ग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी एवं फिनोलोफिक्स 5.0 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। शिमला मिर्च में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव हेतु बाप्स्टीन दवा की 2.0 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को।
1: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
2: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाए, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनी रेडियो, आपनी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका नाम है सुशील शर्मा जी। बाकी की बातचीत हम सुशील जी से ही करेंगे। सुशील भाई, आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को अपना छोटा परिचय दें।
3: थैंक्स अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है बात करने का। तो अपने परिचय के रूप में मैं बताऊं कि मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूं और कानपुर ही मेरा जन्म स्थल है और वहीं पे मेरा जन्म हुआ और आगे की थोड़ी पढ़ाई भी हुई। मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग वहां से मूव हो गए, तो जड़ें जो हैं वो कानपुर में ही हैं। तो मैं अपने आप को एक बिल्कुल हक से कानपुरिया बोलता हूँ।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी कनपुरियों की बात ही कुछ और है। क्या बात है। तो सुशील भाई, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को कोई अपनी पसंद का एक गीत सुनवाइए।
3: समीर जी, एक गाना किशोर जी का बहुत पसंदीदा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्ती जो है इस धरती पे बहुत बड़ा रिश्ता है, जो बहुत ही पवित्र, बहुत पावन है। तो उसके नाम ये गाना है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। तो मैं चाहता हूँ कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त।
2: क्या बात है,
3: श्रोताओं के लिए बजाया ये
2: बेहतरीन। सुशील जी, मैं बताना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। और दोस्ती के जज्बे की बात की है, बात सच है। दुनिया में जब हम आते हैं तो हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई भाई बहन हमें बाय डिफॉल्ट ऊपर से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम बाय डिजाइन इस दुनिया में बनाते हैं। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। वहां पे प्लेटफॉर्म फ्लैट होता है, विचारों का आदान प्रदान बड़ा आसान होता है, गुस्सा, छेड़खानी, मनाना बहुत ही आसान होता है, जबकि रिश्तेदारी में ये चीज बड़ी मुश्किल है। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आइए दोस्तों सुनते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत।

0: सुशील भाई, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए।
1: तो समीर जी, मैं प्रोफेशन वाइज मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ और इस समय मैं मुंबई में मेरा जॉब है और मैं थाना में रह रहा हूँ और कानपुर से मैं यहाँ पे 97 में आ गया था। तो यही मेरी अब कर्म भूमि हो गई है। और अगर मुंबई और थाने की बात करी जाए तो हमें मालूम ही है कि मुंबई जो है व्यावसायिक राजधानी है हमारे भारत देश की और थाना उससे जुड़ा हुआ शहर है जो मुंबई की टेरिटरी से बिल्कुल सटा हुआ है। और थाने शहर की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह कि इस शहर को सिटी ऑफ लेक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब 5-6 किलोमीटर के दायरे में काफी सारी छोटी छोटी झीलें तालाब हैं और एक तालाब तो हमारे घर के काफी नजदीक भी है। तो इस तरह से जो है थाना बहुत ही खूबसूरत शहर है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ का वासी हूँ इस समय पिछले 5 सालों से।
0: बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना तो सुशील जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक प्यारा सा गीत भी सुनवाइए हमारे दोस्तों को।
1: तो जरूर मैं चाहूंगा कि दूसरा गीत भी किशोर जी का है जो बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है और मेरी लाइफ को रिलेट भी करता है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो मैं अपने जीवन में बहुत जगह पे घूमा हुआ हूँ। तो घूमना मतलब यात्रा सफर। तो ये गाना है परिचय मूवी का, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना।
0: क्या बात है, बेहतरीन। जितेंद्र के ऊपर फिल्माया गया ये गीत, आइए दोस्तों सुनते हैं

0: सुशील भाई, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: समीर जी, जैसे कि सभी लोग मध्यम वर्ग से हैं तो मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरा कभी ऐसा कोई बहुत सपना जैसा नहीं रहा, लेकिन ये था कि पढ़ लिख जाएं, इस काबिल बन जाएं कि अपना जीवन बसर हो सके और एक सरकारी नौकरी वाला जो एक एटीट्यूड, जो एक इच्छा होती है मध्यम वर्ग में कानपुर से उत्तर प्रदेश से, तो वही था। तो बाकी बनने जैसा ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या वो बनना चाहता हूँ, बस ये था कि ठीक ठाक एजुकेशन हो जाए और जीवन में कुछ मतलब, तो ऐसा कुछ बनने की ख्वाहिश नहीं थी, बट ये है कि जो भी हूँ आज उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ।
0: बहुत अच्छे। तो ये एक मैसेज हम सभी को जाता है कि हम बचपन में कई बार कुछ सोचते हैं बनने के लिए और नहीं बन पाते तो दुखी रहते हैं कि हम वो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य हमारी जिंदगी में हमें किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचा ही देता है जहां दरअसल हम सचमुच सक्सेसफुल होते हैं। हमें उसमें खुशी लेनी चाहिए। सुशील भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दोस्तों को एक प्यारा सा गीत सुनवाइए।
1: तो समीर जी, मेरा अगला गीत है, ये भी सफर से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं एक जिंदगी के सफर की, क्योंकि बहुत ही प्यारी मूवी थी, बहुत ही प्यारा संदेश था इस पिक्चर में, आपकी कसम, जो शक के ऊपर आधारित थी, और मतलब मुझे नहीं लगता कि शक के ऊपर इससे बेहतरीन फिल्म कोई हो सकती, आपकी कसम। इसका जो गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, किशोर जी का गाया है,
0: क्या
1: बेहतरीन गीत, मेरे दिल के करीब है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, प्यारा सा गीत सुनते हैं सुशील भाई की फरमाइश पर।

0: सुशील भाई, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है?
1: समीर जी, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो ही गायक हैं जिनसे मैं बचपन से बहुत प्रभावित रहा हूँ, बहुत प्रेरित रहा हूँ, आज भी हूँ। जिनके गाने सुनना और गाना, मुझे स्वयं भी गाने का काफी शौक है, बचपन से ही शौक। मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे हॉबी वाला सिंगर हूँ, बचपन से ही गा रहा हूँ और आज भी जब भी मौका मिलता तो कोशिश करता हूँ गाने की। तो मुझे किशोर जी और रफी जी दोनों ही बहुत पसंद हैं, और अगर उनमें से किसी एक को चुनने को बोला जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इन दोनों को ही मेरा पसंदीदा गायक, किशोर जी और रफी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो सुशील भाई, कोई एक गीत सुनवाइए हमारे दोस्तों को।
1: समीर जी, अगला गाना भी किशोर जी का ही है और बहुत ही बेहतरीन गाना, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से गाया हुआ, नीरज जी का लिखा हुआ, फिल्म प्रेम पुजारी का, फूलों के रंग से दिल की कलम।
0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: सुशील भाई, अगला सवाल मेरा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, संभाल के सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए, फर्ज कीजिए आपको कोई जिन्न कहीं से मिल जाए जो आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने को तैयार हो जाए, तो क्या तीन इच्छाएं मांगेंगे आप?
1: तो समीर जी, मेरा बचपन से ही संगीत में, गायन में रुचि रही है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैं सीख नहीं पाया, मैं जो भी आज हूँ गा पाता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो वो सिर्फ एक हॉबी के तौर पे। स्पोर्ट्स में बहुत मेरी रुचि रही बचपन से ही, मैंने स्पोर्ट्स का जब भी मौका मिला कॉलेज में स्कूल लेवल पे खेलने की पूरी कोशिश करी, सभी तरह के स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट काफी फेवरेट रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ना ही गायन में जो मेरी हॉबी थी, ना ही स्पोर्ट्स में कुछ कर पाया, कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि जिससे मैं अपने आप को फील कर सकूं कि मैंने इस चीज में ये हासिल किया। तो ये दो चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा कि काश मुझे अगर जिन मिल जाता तो मुझे गायन की शिक्षा मिल जाए, जो सिंगिंग की जो बेसिक नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है, जिससे कि मुझे अपने गायन को निखारने का और मौका मिल जाता। तो उस जिन से मैं चाहूंगा कि मेरी इच्छा पूरी करे। और स्पोर्ट्स में मैं चाहूंगा कि अगर मुझे क्रिकेट में एक बॉलर के रूप में या बैट्समैन के रूप में या ऑलराउंडर के रूप में कुछ भी, मतलब एक ऐसा मिल जाता। तो दो इच्छाएं तो यही हैं, और बाकी तीसरी इच्छा बस ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरा भाई बहन कोई नहीं है, तो अगर एक बहन होती तो ये इच्छा अगर जिन पूरी कर देता। तो ये तीन इच्छाएं समीर जी।
0: क्या बात है, बेहतरीन, बहुत सुंदर। तो इसी तरीके का कोई प्यारा सा गीत सुनवाइए हमारे दोस्तों को।
1: सो समीर जी, अब मैं रफी जी के गाने की ओर आ रहा हूँ। तो उनका एक गीत है जो गाइड मूवी का है, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही दिल के मेरे करीब है। मुझे जब भी मौका मिलता है, कोई बोलता है कोई गाना सुनाओ, तो मेरे मुंह पर यही गाना आता है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी फरमाइश पर आइए दोस्तों को, अपने दोस्तों को यही गीत सुनवाते हैं सुशील भाई।

0: फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सुशील भाई, अगला सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी पिछली जिंदगी में जाकर, यानी कि पास्ट में जाकर, कोई एक चीज, एक चीज को बदल सकें, तो क्या बदलेंगे आप?
1: मतलब इसी जीवन में?
0: जी, इसी जीवन में। पिछले जीवन में तो हम जा ही नहीं सकते ना।
1: जा ही नहीं।
0: फिर तो हमें भूत बनना पड़ेगा। इसी जीवन में।
1: तो, अच्छा, तो मैं पता नहीं, ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि मतलब मैं जिस तरह का अपने को जानता हूँ, तो मैं काफी सिंपल हूँ, बहुत सादा हूँ, छल कपट नहीं है, चलाकी नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जीवन के इस मोड़ पे, आफ्टर सर्विंग फॉर 32 इयर्स एट दी एज ऑफ 55, की लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंसान को कुछ उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ स्टेट्स होने चाहिए जो उसको जीवन में आगे लेके जा सके। तो अगर वो कुछ स्टेट्स मेरे में होते, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा वो सब जो आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो अगर मेरे जीवन में बदल जाता, वो सब कुछ गुण आ जाते जो आज के समय में जिन्हें गुण कहा जाता है तरक्की के तौर पर या प्रोग्रेस ग्रोथ के तौर पर, तो अगर वो कहीं से मिल जाते तो शायद अच्छा हो।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को?
1: जी, अब मैं चाहूंगा वापस, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दोस्ती मेरे लिए एक बहुत बड़ा ही करीब और बहुत ही प्यारा जज्बा है, तो दोस्ती के ऊपर दोस्ती मूवी का गाना मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ, बहुत ही बेहतरीन गाना, मेरे दिल के करीब, चाहूंगा मैं तुझे सांस हो।
0: वाह, क्या बात है। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यार ऐसे गीत को।

0: सुशील, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, और अब मैं पूछना चाहूंगा आसान सा सवाल कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके आपको जब वक्त मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करते हैं?
1: तो जैसे कि समीर जी मैंने बताया कि बचपन से ही मुझे गीत संगीत का बहुत शौक है, गाने सुनना, गाने गाना। मतलब मैं बताऊं आपको कि बचपन में मैं जब थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में था तो मैं दिल्ली में रहता था, फादर मेरे आर्मी में थे, तो मुझे वहाँ पे रामलीला होती थी, तो रामलीला के बीच में ब्रेक होता था, तो वहाँ पे गाने का एक मौका मिला। तो उस समय मैंने उसमें पिक्चर आई हुई थी हमारे रिवर एंथनी, तो उसका गाना कव्वाली गाई थी, पर्दा है पर्दा। तो गाने का शौक बहुत ही बचपन से है, तो वो आज तक कायम है। उसके बाद जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि खेलने का बहुत शौक रहा, क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला, क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। तो ये हॉबीज के तौर पे तीसरा एक, कभी मैंने अपना ये पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं किया था, तो लेकिन मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन शायद मुझे लगा कि मैं लिख पाता हूँ। तो बीच में सन 2015 से लेकर 18 के बीच में मेरे में लेखन की थोड़ी सी अभिव्यक्ति उभरी और मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैं ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बनाया था और मैंने फिर अपना एक ब्लॉग भी बनाया था। उस दौरान 3 सालों में मैंने काफी कुछ छोटी मोटी कविताएं,

0: छोटी शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरी, वो सब लिखी। एक मंच के साथ जुड़ा था मैं, आज सिराने, जो ट्विटर पे ही होता था, जो कि सिमिलर लाइकिंग वाले लोगों का था। तो वो पीरियड बहुत अच्छा रहा लाइफ का, 3 साल मैंने वो बहुत एंजॉय किया। लेकिन अभी लेखन से जो है रुझान हट गया, तो वो अपने आप ही जगह था, अपने आप ही बंद हुआ है। तो अगर जीवन में कभी वापस जगह तो मैं जरूर उस तरफ जाना चाहूंगा। क्रिकेट खेलना तो अब बंद हो चुका है, तो इस समय मेरे पास एक ही हॉबी बची है, मेरा गायन, संगीत सुनना, गाना। तो उसको मैं अभी भी जब मौका मिलता है तो परस्यू कर लेता।
1: क्या बात है, शानदार। तो अब कौन सा गीत सुनवाएं हम अपने सुनने वालों को?
0: जी, एक रफी साहब का ही बहुत ही प्यारा गीत है, फिल्म तीसरी मंजिल से, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान।
1: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गीत। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
2: तुम

0: सुशील जी, अब तैयार हो जाइए इस पूरे प्रोग्राम के सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल के लिए। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: तो मेरा परिचय बहुत ही सादा सा है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत ही सिंपल हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, बहुत ही मतलब मेरे को अगर आप नींद से जगा के भी बात करेंगे तो पूछेंगे कोई चीज तो मेरे मुंह से सच ही निकलेगा। तो जैसा कि मेरा नाम है सुशील, तो शायद मैं अपने नाम रूपी, तो मेरा परिचय में ये बोला जा सकता है कि बहुत ही सादा, बहुत ही सरल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सच बोलने वाला एक ऐसा इंसान जो सादे जीवन में और सादगी में विश्वास रखता है और लोगों के साथ जुड़े रहना, लोगों से प्यार मोहब्बत, दोस्तों के साथ दोस्ती जज्बा बहुत विशेष है जीवन में। तो बस मुझे लगता है मेरा ये परिचय पर्याप्त।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमारे दोस्तों को एक और सुंदर सा गीत सुनवाइए।
1: एक बहुत बेहतरीन गाना रफी जी का, शशि कपूर जी पे फिल्माया हुआ, वादियां मेरा दामन।
0: बहुत बढ़िया जी। आइए दोस्तों सुनते हैं इसी गीत को।

0: किसी इंसान की जबान ही होती है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जबान से निकले हुए शब्द जो हैं वो इंसान को अगर वो गलत तरीके से बोले जाएं, गलत शब्द बोले जाएं, तो वो काफी कुछ दूसरे व्यक्ति को बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ही दुख पहुंचाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर अपनी बातचीत, अपनी जबान को अगर अच्छा रखें, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करें, इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हमारी कोई बात किसी को हर्ट तो नहीं कर रही, जाने अनजाने की बात अलग है लेकिन जानबूझकर ऐसा ना हो, तो ऐसा कभी हो जाता है तो मुझे थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि मैं स्वभाव से थोड़ा सेंसिटिव हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो भी बात कही गई है उसको भूलने की कोशिश करूँ, थोड़ा समय लगता है लेकिन वो हो जाता है। और उस समय मैं कोशिश करता हूँ कि संगीत, जो मुझे लगता है कि एक थेरेपी की तरह काम करता है, कि अपना कोई पसंदीदा गीतकार को सुन लिया या उनका गाना सुन लिया, तो उस तरीके से मैं उस चीज को रिकवर करने की कोशिश करता
1: बहुत बढ़िया। तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे दोस्तों को अब?
0: हूँ। जी, अब मैं मुकेश जी का गाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन गाना, बहुत ही बेहतरीन मूवी है तीसरी कसम, राज कपूर की और वहीदा रहमान जी की, उसका एक बहुत ही प्यारा गाना, बहुत दिल के करीब है मेरे, और मौका मिलता है तो मैं गाता भी जरूर।
1: जी
0: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
1: वाह, क्या बात है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ये दुनिया बनाई, क्या बात है। आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: और सुशील भाई, अब हमारे प्रोग्राम के उस मुकाम पर आ गए हैं जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: समीर जी, संदेश बस यही है कि जैसे मैंने कहा कि हम सरल रहें, सिंपल रहें, सादे रहें, और हमारा जीवन ऐसा हो कि मतलब किसी को कभी उससे कोई तकलीफ ना हो। हम लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, लोगों में प्यार बांटें, और जब कभी भी किसी की मदद करने का कोई मौका मिले और भगवान ने अगर हमें उससे लायक बनाया है, हम सक्षम हैं वो मदद करने के, तो हम वो मदद जरूर करें। तो मैं दर्शकों से यही चाहूंगा कि और विनम्र रहें जीवन में, विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि यही मेरा संदेश होगा अपने श्रोताओं को कि खुश रहें, लोगों को खुश रखें और बस यूं ही जीवन जीते रहें।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। सुशील भाई, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी बातें सुनकर और आपकी फरमाइशी गीत सुनकर हमें भी बहुत मजा आया।
1: समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर मुझे प्रदान करने के लिए। बहुत ही रोचक अनुभव रहा ये, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही खुशी हुई। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके इस प्रोग्राम के लिए, आपके इस चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
2: गुस्से में हम ज्यादातर वो गलतियां कर बैठते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि छोटी सी बात बस बड़ी हो जाती है, सुलझी हुई बात उलझ जाती है और हमारे आसपास के कुछ लोग इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, वो हमें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ गलती करें। ऐसे में ज्यादा आनंद इस बात में है कि हम कोई रिएक्शन ही ना दें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपना सच कहें, अपनी जरूरत को समझें। अपना ध्यान रखने पर जोर लगाना कुछ खास नतीजे हासिल करने के लिए दूसरों पर दबाव डालना नहीं होता। दोस्तों, ये केवल अपने लिए खड़ा होना है बिना परवाह किए कि दूसरे क्या सोचेंगे। लेखक यंग प्यूब्लो कहते हैं, कई बार कम बोलना बहुत अच्छा होता है। हर विचार उपयोगी नहीं होता, हर भावना को शब्द देना कोई जरूरी नहीं है। बेहतर होता है कि हम अपनी रफ्तार कम कर लें और अपने विचारों को अपने नजरिए को स्पष्ट करें। हमारा अहम प्रतिक्रिया देता है, जल्दबाजी करता है, लेकिन भीतर की शांति सही दिशा में शालीनता से आगे बढ़ती है।
1: बने रहिए आरजे समीर के साथ।

रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे ना तो अकेले रह जाओगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती, बस समय समय की बात है। बगल की स्कूटी पर खूबसूरत लड़की हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगने लगता है।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ जाइएगा, रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है।

इंसान भी अजीब है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वो सब बातें और इल्जाम इकट्ठे करना शुरू कर देता है।

जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो?
2: मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
3: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती हैं, जैसे कि मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा विनोद खन्ना जी के बारे में, आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी में तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना?
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम आपका।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परली ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्तार।
0: गजलों के साथ के इस प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस महकती हुई शाम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है माधव नूर साहब। नूर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: आपका बहुत शुक्रिया समीर साहब कि आपने मौका फराहम किया और मुझ नाचीज को इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम पर आ सकूं, बहुत शुक्रिया।
0: तो नूर साहब प्रोग्राम को शुरू करते हुए बस एक छोटा सा मासूम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जन्म कहां पर हुआ और अब भी आप कहां रहते हैं, दोनों जगहों के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी दीजिए।
2: तो मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ और फिलहाल मैं मुंबई में ही रहता हूं। बीच में कुछ दौर गुजरा जब मैं दुनिया घूम के आया, पर फिर जो है माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती है
0: जी।
2: वो चाहे जितना छोटा हो जितना बड़ा हो
0: जी जी जी।
2: तो बस सारी दुनिया घूम के पहले यूके, उसके बाद दुबई और उसके बाद फिर मुंबई आ गया। मुंबई में ही रहता हूँ, इवेंट्स और एग्जीबिशंस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है।
0: बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया साहब सुन के। एक अलग तरह की शख्सियत, एक अलग तरह का जज्बा कि आपको दुनिया भी घूमनी है लेकिन अपने देश से भी मोहब्बत है, बहुत खूब। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमारे सुनने वालों के लिए सुनाएं।
2: जी मैं बिल्कुल वो गजल कहता हूं जो बहुत पहले मकबूल हुई थी
0: जी,
2: मतलब लहजा फरमाए कि परिंदे शाम होते ही ठिकाना ढूंढते हैं, हम घर लौट आने का बहाना ढूंढते हैं।
0: वाह क्या बात है।
2: कोई आवाज दे अपना तो जाए हम भी घर को, के गैरों में मुसलसल दोस्ताना ढूंढते हैं।
0: ओहो
2: बड़ी संजीदगी जाहिद तेरे मकतब में होगी, बड़ी संजीदगी जाहिद तेरे मकतब में होगी, खुशी रिंदों की महफिल में रोजाना ढूंढते हैं।
0: वाह क्या बात है।
2: अभी शायद किसी के दोस्त भी हम बन न पाए
0: जी,
2: नए रिश्तों में जज्बा हम पुराना ढूंढते हैं,
0: पुराना ढूंढते हैं, क्या बात है।
2: साले यार तो ऐ नूर अब मुमकिन नहीं है
0: जी,
2: चलो यादों में ही गुजरा जमाना ढूंढते हैं।
0: वाह वाह
2: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी गजल। पुराना जमाना ढूंढना, पुरानी तासीर की चीजें ढूंढना, ये बात तमाम तमाम जगहों पर तमाम तमाम वक्त पर अक्सर निकल के आती है कि लोग बाग पुरानी चीजें ढूंढते हैं, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने व्यवहार, पुरानी भावनाएं, कुछ तो है उस पुरानी शख्सियत, उस पुरानी चीजों में जो हम बार बार उनकी तरफ लौट के जाना चाहते हैं। बड़ी कमाल की बात है और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा कितना भी जमाना आगे निकल जाए।
2: Old is gold.
0: बहुत बढ़िया बेहतरीन। तो नूर साहब अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
2: जी मैं, मेरी पसंदीदा गजल है, तो मैं आपको गायक का नाम बताता हूं
0: जी,
2: मेहदी हसन साहब की गजल सुनना चाहूंगा, कोई भी बेहतरीन।
0: ठीक है साहब, बहुत खूब। दोस्तों नूर साहब की फरमाइश पर मेहदी हसन साहब की ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: खूब बहुत खूब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नूर साहब, बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: मैं बचपन में दरअसल फौज में एक फौजी बनना चाहता था।
0: क्या बात।
1: मेरी ख्वाहिश ये थी कि फौज का एक बड़ा अफसर बनू, आला सा अफसर बनू, यूनिफॉर्म हो हाथ में, जो है वो फौज के उसका कोई बेहतरीन सा हथियार हो
0: जी,
1: और सरहद पर जाके जो है देश की रक्षा करूं। ऐसे ऐसे ख्यालात बचपन में आते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो प्रैक्टिकलिटीज का सामना हुआ, अपनी कुव्वतों का एहसास हुआ
0: जी,
1: और फिर मुझे समझ में आया कि कोई जंग और लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है
0: जी,
1: फाइनेंस की तरफ अपना झुकाव बना लिया।
0: ओहो क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। कई बार होता है कि हम बचपन में कुछ बनना चाहते हैं, किसी को देखते हैं और उसको आइडियल बनाकर उसकी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन डेस्टिनी, किस्मत, कुदरत हमें कहीं और लेके जाती है जहां पर हमारे लिए ऊपर वाले ने कुछ काम सोच के रखा होता है कि आपको तो यही काम करना है, बस उसमें भी हमें सफलता मिलती है। तो आज इस मुकाम पर ये सवाल पूछने का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि हम क्या बनना चाहते थे और हम आज क्या बने हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को बस हम समझें, ना कि दुखी हो ना कि परेशान हो, समझें।
1: बिल्कुल,
0: और यही चीज आगे आने वाली पीढ़ियों में भी दिखाई देगी। बहुत खूब नूर साहब, बहुत खूब। अब मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी एक गजल हमें सुनाए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत ही मेरे दिल के करीब गजल है, मतला मुलायजा फरमाए कि तुम ही हो हर उलझन का हल
0: जी,
1: तुम ही सारी उलझन हो, तुम ही हो हर उलझन का हल, तुम ही सारी उलझन हो, तुम ही हो इस दिल के साथी, तुम ही दिल के दुश्मन हो
0: जी।
1: दिल ने शोर मचाना छोड़ा जब ये तुमसे दूर हुआ, यानी तुम आवाज थे इसकी, यानी तुम ही धड़कन हो।
0: क्या बात है।
1: छोटी छोटी दो मांगे हैं एक मिसरे में कहता हूं, छोटी छोटी दो मांगे हैं एक मिसरे में कहता हूं, माधव के संग राधा हो और दुनिया सारी मधुबन हो
0: जी।
1: और आखिरी शेर देखें कि मुझमें घुलकर और मुअत्तर मुझको तुम कर देते हो, मुझमें घुलकर और मुअत्तर मुझको तुम कर देते हो, मुझसे आए खुशबू तुम्हारी मैं पानी तुम चंदन हो।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत बहुत बहुत खूब। चंदन हो, बेहतरीन, वाह, सुनकर लुत्फ आ गया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस प्यारी सी गजल के लिए। तो फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं।
1: मैं असल दरअसल मैं आपको एक गजल बताता हूं, उसके गायक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये गजल सुनना चाहूंगा कि शामे फिराक अब न पूछ आई और आके चल गई, चल दोबारा कहना पड़ेगा।
0: जी जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बताएं।
1: शामे फिराक अब न पूछ आई और आके
0: चली गई, ऐसा कुछ,
1: ऐसा कुछ है वो गजल
0: जी।
1: मेरे ख्याल से फैज अहमद फैज साहब की गजल है ये।
0: जी जी जी जी,
1: कोई आपने आखिरी दिनों में अस्पताल में लिखी कही थी
0: जी,
1: ये गजल है
0: जी जी, जी। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी फरमाइश पर, आपके हुक्म पर हम अपने दोस्तों को यही गजल सुनवाते हैं।
2: फैज अहमद फैज साहब का कलाम राग दरबारी में पेश।

0: बहुत खूब नूर साहब, अब आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी एक गजल और हमें सुनाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना देता हूं जी। आपका हुक्म पर आंखों पर मतलब देखें कि मैं अनजान था जिनसे ऐसे
0: जी
1: जज्बों की पहचान हुई।
0: क्या बात है।
1: मैं अनजान था जिनसे ऐसे जज्बों की पहचान हुई, नूर हुआ जो कौसे कजा तो रंगों की पहचान हुई। कौसे कजा के मानी है धनुष, इंद्रधनुष, रेनबो।
0: जी जी जी।
1: नूर हुआ जो कौसे कजा तो रंगों की पहचान हुई, खोल के आंखें जब भी हकीकत का मैंने दीदार किया
0: जी।
1: खोल के आंखें जब भी हकीकत का मैंने दीदार किया, मुझको दिलासा देने वाले सपनों की पहचान हुई।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है।
1: मैंने अपने रहबर को बस याद किया और मुस्काया। मैंने अपने रहबर को बस याद किया और मुस्काया, मस्तों की टोली में जब भी पीरों की पहचान हुई।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्तों की टोली में जब भी पीरों की पहचान हुई, मैं सारे आकाश में घूमा पंख थके तो लौट आया।
0: ओहो।
1: मैं सारे आकाश में घूमा पंख थके तो लौट आया, जब आकर डाली पर बैठा पेड़ों की पहचान हुई। अब आकर डाली पर बैठा पेड़ों की पहचान हुई। और आखिरी शेर के अश्क में मिलकर खींच रहा है देख लकीरें गालों पर
0: जी।
1: अश्क में मिलकर खींच रहा है देख लकीरें गालों पर, दुख और काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान हुई।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: दुख और काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान हुई, नूर हुआ जो कौसे कजा तो रंगों की पहचान हुई। बहुत शुक्रिया,
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी गजल साहब, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। माधव साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी गजलें हमें सुनाई, हमारे दोस्तों से बातचीत की, आपके ख्यालात हमने सुने, तमाम तमाम तरीके के अलग अलग ख्यालों से हम मिले, बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माधव साहब।
1: आपका बहुत शुक्रिया समीर साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया तहे दिल से।
0: थैंक यू।

0: आगे।
1: दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आय किस तरीके से दुगनी हो, किस तरीके से बड़े, तो हमें क्या करना होगा। आय तभी दुगनी होगी जब हम आधुनिक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे, हम जैविक पद्धति से खेती करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं बार बार किसानों के लिए नई नई योजना के तहत जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथियों की आय दुगनी हो। तो हमारे अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम अब 52 जिलों में प्राकृतिक खेती पर जोर देंगे। प्राकृतिक खेती पर जोर देना यानी हम किस तरीके से जैविक पद्धति से खेती करें, क्योंकि उनको भी सभी लोगों को एहसास होने लगा है कि अब हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और इस मौसम बदलते मौसम में हम अपने आधुनिक पद्धति से खेती करके अपनी आय को दुगनी करें, क्योंकि हम वही परंपरागत खेती करते रहते हैं और वही बीज बोते रहते हैं जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। और खासतौर पर जब हम केमिकल भरी यानी रासायनिक खेती पर का जिक्र करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम अपनी मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें एहसान जो एहसास है उसको हम अब कैसे हम अपने खेती को एक आधुनिक पद्धति से करके अपनी आय में बढ़ोतरी करें। खासतौर पर छोटे छोटे उन्होंने टिप्स भी देते हैं, हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते भी हैं कि हमारे किसान साथी छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी इसमें कर सकते हैं खेती किसानी से जुड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजीविका के स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे आजीविका को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे ऐसे कुटीर उद्योग हैं जो हमारे किसान साथी, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो हमारे किसान साथी खेती के साथ साथ वो भी उद्योग कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज तीन सेगमेंटों पर बात करेंगे। पहला, हम किस तरीके से जो हमारे पेड़ लगे रहते हैं पेड़ के आसपास हम वर्मी कंपोस्ट लगाकर हम किस तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं। दूसरी बात, सीप। अब लोग सोचते हो कि मोतियों कहां से आते हैं, मोती की भी खेती होती है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी हम सेगमेंट हम लेकर आएंगे, मौसम आधारित जानकारी भी हम लेकर आएंगे और खास तौर पर हम एक सफल व्यक्ति की कहानी भी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आपको सुनाएंगे। तो हम देर नहीं करते हैं और हम अपने श्रोता साथियों को बर्मी कंपोस्ट जो खेत के आसपास यानी वृक्ष के नीचे जो हम कंपोस्ट उगाते हैं कैसे उगाते हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से विराम को, सुनते हैं इस प्यारे से व्हीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक

0: तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिससे पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखें। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर ले। केचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपड़ा रेडियो अपनी बातें। और मित्रों, अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपने खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए। अगर मध्यप्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने ये घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ

0: नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।

0: में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
1: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम खेत खलियान में मौसम की जानकारी का। तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उड़द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लिड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी की पलटने वाले हल से कर दें, ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सकें, तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोनोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरम फास 40 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो 6.0 ग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी एवं फिनोलोफिक्स 5.0 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। शिमला मिर्च में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव हेतु बाप्स्टीन दवा की 2.0 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को।
3: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है। जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
4: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था, तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है, और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं, और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांचा 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कैसे हैं हमारे किसान साथी? हाँ, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पे बैठे होंगे। लेकिन किसान साथियों, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं जो घर पे बैठने वाले नहीं हैं। उनको कहीं ना कहीं उलझने हो रही होंगी कि आप क्या करें, क्या कैसे करें, अपनी खेती किसानी में क्या कुछ नया करें। तो उन किसान साथियों के लिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM तरह तरह की बातचीत हम खेती बाड़ी कार्यक्रम में लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आधुनिक पद्धति से हमारे किसान साथी खेती करना चाहते हैं और कर सकते हैं और उनको करने के लिए कि जो समस्या आती है उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आप बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बातें। और आज के हमारे खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम खेतों की तैयारी पर चर्चा करेंगे, साथ साथ में सब्जियों किस तरीके से हम अपने खेतों में खाली खेत जो पड़े हुए हैं उसको कहाँ कैसे लगा सकते हैं सब्जियों को, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ उन्नतशील किसान ज्ञान सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो बताएंगे किस तरीके से पथरीला क्षेत्र है और अभी चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी चूंकि आने वाले बरसात के मौसम में किस तरीके से अपने खेतों का जो पानी रोकने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो आपको सीधा ले चलते हैं ज्ञान सिंह जी के पास और उनसे उनके अनुभवों को जानते हैं।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर ज्ञान सिंह यादव जो रायपुरा के रहने वाले हैं, एक उनका अनुभव काफी है कृषि के क्षेत्र में, तो उनके अनुभवों को हम साझा करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी आने वाले समय में यानी बरसात के मौसम में पानी को रोक सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं इस मौसम में जायज की फसलों में और खासतौर पर कुछ पर्यावरण जुड़ी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले महीनों बाद बरसात का मौसम आएगा और बरसात के मौसम से पहले हम कुछ तैयारियां करते हैं, खासतौर पर अगर उन किसानों के बारे में हम बता दें कि जो खेती किसानी करते हैं और जहां पर पथरीला इलाका है, उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि पानी बचाने के लिए उनको किस तरीके का प्रयास करना चाहिए?
4: इसके लिए ये है कि ऐसी तो शासन की योजनाएं भी, मंशा भी है कि हम पानी का स्टॉक करें। अगर 5 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ का खेत है, उसमें एक जो है पर्कुलर टैंक खुदाएं
2: जी,
4: जो वहां पर पानी रुके
2: जी,
4: उससे थोड़ी सिंचाई भी होती रहेगी और वाटर लेवल भी बढ़ेगा
2: जी।
4: और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो वहां पानी की सुविधा रहेगी, तो कुछ पानी भी दे सकते हैं, कुछ वर्षा होगी, कुछ मतलब ऐसी स्थिति में अपना पानी ले सकते हैं, तो किसान कम पानी में भी अपनी फसल उगा सकते हैं। पर्कुलर टैंक जगह जगह तैयार करे जा रहे और जिन लोगों के पास खेत तालाब के लिए जगह है, शासन की योजनाएं हैं, वो वहां पर खेत तालाब बनवा सकते हैं, उससे मछली पालन भी कर सकते हैं, रोजगार भी मिलेगा और वाटर लेवल भी बढ़ेगा। मैं तो अभी सीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है
2: जी,
4: तो इसका पानी रोकने के लिए कछार नाले पर एक तालाब निर्माण कराया जाए, तो वहाँ बहुत अच्छा तालाब बने, डैम बने, जिससे किसानों के लिए नहर भी मिलेगी, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, मछली पालन होगा, पशुओं को मवेशी को पानी मिलेगा और बहुत अच्छा तालाब बने, तो इसका प्रस्ताव ही हमने बनवा के भिजवाया है और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी उस पर जो है शासन ध्यान देगी।
2: जी ज्ञान सिंह जी, यहाँ पर एक बात और जहन में आ रही है। हम देखते हैं कि बहुत सारा इलाका अपना पथरीला इलाका है, और खास तौर पर उन पथरीले इलाकों को अगर देखा जाए जहाँ पर हमारे किसान साथी अपनी खेती को करते हैं, सीमित उनके पास खेती है, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं वहाँ पर हमारे किसान साथी जहाँ पर पानी रुकता नहीं है, वहाँ पर किस तरीके की वो व्यवस्था करके रखें?
4: इसके लिए ये स्थिति है, कृषि के साथ में पशुपालन भी जुड़ा है
2: जी,
4: और वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। इसमें गाय का गोबर है
2: जी,
4: गाय का मूत्र है
2: जी,
4: इससे खाद बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। एक बाल्टी खाद 350 रुपया का बिकता है
2: जी।
4: और एक गाय जिसके पास है, मतलब गायें तो कई हैं लोगों के पास, उसका गौमूत्र इकट्ठा करें, उसमें गाय का गोबर, उसमें कुछ चूना भी डालें
2: जी।
4: उसमें गुड़ का शरबत बनाएं
2: जी।
4: उससे जो है एक देसी खाद तैयार करें, उसमें छिड़काव करें तो अच्छी पैदावार मिलेगी, उससे जो फसल होगी वो उसको खाने पीने की चीजें बनेगी तो उससे बीमारी भी मुक्त रहेगी। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सरकारी खाद डालते हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, भस्सी है, सुपर फास्फेट है, जिंक सल्फेट डालते हैं और कीटनाशक दवाई डालते हैं, तो इससे और बीमारी लोगों को बढ़ रही, उसका बीमारी भी कम होगी और उपज भी मिलेगी। और इसके लिए आप घर बैठे खाद तैयार कर सकते हैं, पैसा की भी बचत होगी और घर की गाय का गोबर का उपयोग होगा, गौमूत्र का उपयोग होगा, इससे जो है पथरीली जमीन में भी अगर उस खाद को डाल दिया जाए तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और हम चाहते हैं कि गांव-गांव में गायें सब रखें, आलतू फालतू गायें जिनके पास नहीं है उनको पकड़ के अपनी उनके व्यवस्था करें, उनसे गाय का गोबर लें, गाय का मूत्र लें और गाय के गोबर से खाद तैयार करें, तो अपना भी काम चला सकते हैं, दूसरों को भी खाद दे सकते हैं। मैं तो जी चाहता हूं कि इससे ना तो मवेशी परेशान रहेगी और ना किसान परेशान रहेगी। जैसे गांव-गांव गौशालाएं खुली हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं खोले शासन तो स्वयं की गौशाला खोल दो, उससे जो है गोबर भी मिलेगा, गाय की पेशाब भी मिलेगी और गाय के गोबर से बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं जिससे बीमारी मुक्त होगी। जो अनाज होंगे, जो दालें होंगी, जो सब्जी होगी, बहुत अच्छी किस्म की सब्जी बनेगी, उसका टेस्ट भी अलग रहेगा और बीमारी मुक्त रहेगी।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी इस चर्चा को आप सुन रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है हमारे किसान साथियों के लिए। क्यों ना इसी बीच हम एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं और गीत के बाद इस चर्चा में और भी बातें सुनेंगे हम खेती किसानी से जुड़ी। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: एक चीज और जानना चाहेंगे ज्ञान सिंह जी, आपका अनुभव इस क्षेत्र में खेती किसानी में काफी अनुभव रहा है और खास तौर पर आप उन किसानों के लिए भी प्रेरणा भी हैं जो खेती किसानी करते हैं। एक चीज जहन में है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी अब चूंकि ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां लगाई जाती हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं या जिसे जायज का फसल कहा जाता है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अभी इस मौसम में हमारे किसान साथी लगा सकता है?
1: किसान चाहे तो जैसे अपने खेतों में

0: भिंडी उगा सकते हैं, कद्दू उगा सकते हैं, लौकी उगा सकते हैं, करेला उगा सकते हैं और हरी धनिया भी उगा सकते हैं, तरबूज भी उगा सकते हैं। अभी अपने किसान का समय है, इस फसल को ले लिया, अगली फसल की तैयारी करे, उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अपने तारबाड़ी जाली लगाए जिससे मतलब पशु नुकसान न पहुंचा सके। और गन्ना का भी समय है, किसान चाहे तो गन्ना भी लगा सकते हैं, गुड़ उससे तैयार होगा और जूस भी मिलेगा और जो औषधि के रूप में भी है। अभी से मतलब बहुत कुछ किसान तैयारी करे और जैसे पौध तैयार कर सकते हैं, मिर्च की है, बैगन की है, टमाटर की है, ये पौध तैयार कर सकते हैं। उससे जो है आगे आने वाले समय में पैसा भी मिलेगा, क्षेत्र में ताजे फल भी मिलेंगे और बीमारी मुक्त रहेंगे। और देसी खाद डाल के पौध तैयार करें और देसी औषधि तैयार करें, उस पर छिड़काव करें जिससे बीमारी ना हो और जो भोजन करें उस सब्जी से वो बीमार ना रहें। मेरा ये कहना है सभी किसानों से कि बहुत समय है, जिसके पास पानी की व्यवस्था है वो तत्काल अपने काम में लग जाए। जा फसल तो ले ली आदमी ने, अगली फसल लेने के लिए अभी से जुट जाए। और जो वृक्षारोपण करना चाहते हैं वो अभी से गड्ढा खोद दें, उसमें जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं और उसकी गड्ढा तप जाएं, तो बहुत अच्छी किस्म का पौधा उगेगा। उससे जो है जल्दी समय में अभी पपीता की भी पौध तैयार कर सकते हैं। पपीता जैसे मैंने पपीता लगा रखा है एक दो बीघा में, बहुत अच्छी किस्म का पपीता निकला। वहाँ पे कई लोग जाते हैं, देखते हैं और उसका टेस्ट भी लेते हैं और वहाँ चल के सबसे मैं तो ये देखा है कि जो भी जाता है सबसे पहले वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के वहाँ घूमते हैं लोग बाग, और इसके बाद बोलेंगे भैया चाय पी लो, बोले चाय बाद में, पहले वीडियो बना लें। वीडियो बनाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमने कुछ किया है तो उसके लिए हमें भी खुशी होती है। जो भी लोग साथी आते हैं, चाहे जिला से आए, चाहे ब्लॉक से आए, चाहे संभाग से आए, तो उन्हें भी खुशी होती है कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया है यहाँ, तो मुझे भी खुशी होती है, उन्हें भी खुशी होती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तय कर ले, जैसे लोगों को जो चीज की आवश्यकता है वो जरूर पौधा लगाएं, जैसे आम है, कटहल है, नींबू है, पपीता है, संतरा है और भी कई चीजें ऐसी हैं, अमरूद है और ये आंवला है, मतलब जी तैयार कर सकते हैं तो स्वयं को खाने के लिए मिलेगा, बगल वाले को भी मिलेंगे, जो भी रिश्तेदार आएगा उसकी थैला में डालता भी बनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी व्यवस्थाएं, केवल आदमी को नमक की आवश्यकता है कि नमक मजबूरी है कि यहाँ नहीं होता है, नमक खरीदना पड़े, कपास भी तैयार कर सकते, सब्जी भी तैयार कर सकते, दालें भी कर सकते, भाजी भी तैयार कर सकते। जो किसान भगवान का दूसरा रूप है, मैं तो ये चाहता हूँ किसान अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्तव्यों को समझे जिससे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी यही भावना है। मैं तो बुंदेलखंड में MP, UP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां भी गया हूँ, और मैंने किसानों से सबसे पहले निवेदन किया कि आप भगवान के दूसरे रूप हैं, आप सारी व्यवस्थाएं करते हैं और अपने काम में जुड़े रहिए। जितनी मेहनत आलतू फालतू इधर उधर करते हो, अपने खेतों में काम करें तो उससे पैसा भी मिलेगा और स्वस्थ भी रहेंगे जो आदमी।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और साथियों, अभी आप हमारे विषय विशेषज्ञ ज्ञान सिंह जी से इन अनुभवों को साझा वो कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी गर्मियों में किस तरीके से सब्जियां लगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, फल फ्रूट भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच हम सोच रहे हैं कि एक और मधुर सा गीत सुन लेते हैं। गीत के बाद आपकी हमारी मुलाकात होगी कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो भील टांट्या 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आज मानी चलो कूलर में बैठा है, एसी में बैठा है, एसी की गाड़ी से चल रहा है, वो समझ लो बीमार हो जाते हैं। और जब खेत पे हरी भरी मतलब सारी व्यवस्थाएं रहेंगी स्वच्छ, अगर घड़ा में पानी भर के रख दो आम के पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे, वो पानी पियो तो उसका स्वाद देखो क्या है, उससे बीमारी मुक्त होगी। जब फ्रिज का पानी पिए तो बीमारी होती है, कूलर का हवा लेंगे बीमारी होती है, एसी के बंगला में बैठेंगे बीमारी होती है, जब बाग में बैठेंगे तो सारी बीमारी कोसों दूर भाग जाएंगी।
2: बिल्कुल,
1: मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग, चाहे किसान भाई हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दें, जिससे पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ऐसी चीजें तैयार करें और ऐसी चीजें तैयार करें कि जिससे पर्यावरण फैले। अगर वाहन भी चलाते हैं तो उसमें भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, फैक्ट्री चलती तो वहां पे आसपास में पौधा होंगे तो जो है ऑक्सीजन देंगी, और बाकी जो है ऐसी स्थिति है कि जो गंदे वाली चीजें खराब चीजें हैं वो पेड़ ले लेते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं यही चाहता हूँ। मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव है, मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ। धन्यवाद।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और मित्रों, अभी आपने हमारे जो रायपुरा से थे हमारे ज्ञानचंद्र जी, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातचीत बताई है कि अपने जीवन काल में यदि आपका जन्मदिन पड़ता है तो उस दिन आप कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाइए, क्योंकि पृथ्वी का भी एक संतुलन रहता है। जिस तरीके का हमारा एक संतुलन रहता है, उस तरीके का हर चीज का एक संतुलन बनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे धरती का भी एक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में वृक्ष होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो रहा है। खासतौर पर देखा जाता है कि जब हम पेड़ को काटते हैं और उसकी जगह हम जब दूसरा पेड़ नहीं लगाते हैं तो धीरे धीरे वो जमीन खाली होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर जंगल बिल्कुल नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। और सोचो उस समय क्या होगा, क्या धरती पर मनुष्य का जीवन संभव होगा? तो यदि आज से ही हम प्रण कर लें कि हमें कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने भी कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम और आपको मिलकर एक संकल्प लेना चाहिए, और उस संकल्प के साथ साथ लोगों को भी हमें जागरूक करना चाहिए। खासतौर पर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत बता रहे हैं कि जो हम केमिकल खाद इस्तेमाल करके हम जो फसलों को उगाते हैं, उन फसलों से जो बीमारी हो रही है आज हम आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है कि वास्तव में हमने कभी इस तरीके की बीमारी नहीं सुनी थी। तो आज समय है अपने अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कम से कम सोच के रखना चाहिए, और हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें संकल्पित होना अति आवश्यक हो रहा है। और खास तौर पर हम अपने उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे जो अभी भी जो केमिकल भरी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर जब दवाइयां डालते हैं, छिड़काव करते हैं अपने फसलों में, तो उससे पर्यावरण भी दूषित होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं जो आवश्यक है, हमें सोचने वाली बात है और उस पर ध्यान अति आवश्यक है हमें लगाने के लिए।
4: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने ज्ञान सिंह जी की इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, और इस चर्चा से हमें निकल के आया है कि हमारे किस तरीके से किसान साथी जो घर पर बैठे हुए हैं सब्जियां किस तरीके से लगा सकते हैं, खासतौर पर अब जो बरसात का मौसम आने वाला है किस तरीके से हम अपने खेतों की तैयारी कर सकते हैं, खासतौर पर पानी बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा है कि हमारे किसान साथी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर समझ गए होंगे और अपनी तैयारी करने में लग गए होंगे। तो साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं। तो साथियों, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं परे से गीत को। नमस्कार।

0: नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो टंटेबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज। इसमें हम अभी सुनेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती किस प्रकार की जाती है और कैसे करें? हमारे झाबुआ की बात करें तो झाबुआ में प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत ही कम लाभ लिया जा रहा है और प्राकृतिक खेती नहीं के बराबर की जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए और इससे हमारी भूमि मजबूत होती है, अच्छी पैदावार मिलती है, जिसे हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं और हमारा खेत भी खराब नहीं होता है। आज झाबुआ के किसान भाई यूरिया डालकर अपनी जमीन को बहुत कठोर कर लिए हैं। किसान भाइयों, ऐसे में आने वाले समय में हमारी मिट्टी खेती के लायक नहीं बचेगी, तो हमें प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए और प्राकृतिक खेती का पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि हमारी भूमि लंबे समय तक अच्छी फसल दे सके। प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ सामान होते हैं जो आप नोट कर लीजिए, जीवामृत, गुड़, बेसन, गोबर, गौमूत्र और मिट्टी, इन सभी को मिलाकर विधिवत प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और अपने घर पर ही अपना खाद तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन सर से।
1: घोल बनाना किसमें? 200 लीटर पानी में। कितने लीटर में? 200 लीटर पानी में। इसको क्या करना है? रोज सुबह शाम को डंडा से उसको हिलाना है, समझ आएगी नहीं? उसको हिलाना है और 7-8 दिन में वो बन जाएगी खाद। कब बनेगी? 6-7 दिन बाद में। उसको क्या करना है? छान लेना है, ऊपर जो रहेगी नी कपड़े से छान लेना है और स्प्रे पंप में या ड्रिप इरिगेशन ड्रिप में उसमें भी अपन पानी देंगे पौधों को, और उसकी जो गोबर की खाद रहेगी वो हमको पौधे की जड़ों में डालना है। ये ऑर्गेनिक खेती है। अभी इसमें क्या है कि पैसा अपना लगा नहीं, क्या लगा? सिर्फ गुड़ का पैसा लगा है, बाकी घर में बेसन है, गोमूत्र है अपने पास, गोबर की खाद है, ये सभी चीज है, तो हमारा पैसा कहाँ लगा? कुछ नहीं लगा। लगा क्या? ये इसमें। और दूसरी बात है कि हमको इन खेती में हमारा खरपतवार नाशक है, इनको हम क्या करते हैं, उगाड़ के बाहर फेंकते थे खेतों में, इसको फेंकना नहीं है, हमको खेत में मल्चिंग करना है, उसको बिछा देना है, तो ऊपर की सूर्य की रोशनी आएगी तो वो अपनी जमीन से मॉइस्चर नहीं उड़ेगा और उससे हमारा ऑर्गेनिक जमीन में बना रहे, समझ आएगी नहीं? हम क्या करते हैं, किसान उगार के बाहर फेंक देते हैं, उसको हमको खेत में ढक के रखना है। दूसरी बात है कि हम जब भी फसल कटाई हो रही है उन फसल को ऊपर से काटना है, जमीन में सूर्य की रोशनी नहीं जाना चाहिए तो नुकसान हो रहा है, बढ़ा कि नहीं? अभी बहुत से किसान खेत में पलायन कर रहे, पलायन मतलब उसको आग लगा रहे, जमीन में आग नहीं लगाना है। इसमें जितने भी सूक्ष्म तत्व जो है हमारे वो पूरे मर जा रहे हैं, कहां से होगी बताओ? तो क्या करे, ऊपर हमारे जमीन में अपने इंसान को आग लगा रहे, वो भी हमारी धरती माता है, वो धरती माता को तुम आग लगाओगे उसमें सूक्ष्म तत्व पूरे खत्म हो जाएंगे, बुझाएंगे कि नहीं? आग नहीं लगाना है हम उसको, जमीन को रोटावेटर से जमीन को खेड़ना है, लंबे प्लाव से उसको खेड़ना है और वो प्लाव नीचे जमीन में घास अंदर घुसना चाहिए और बिल्कुल सड़ जाएगी। जमीन में आग नहीं लगाना है, जमीन में जितने आग लगाओगे इतना नुकसान हो जाएगा आने वाले समय में। कभी आपके खेत में आग लगाई और वहां पर आपने फसल लगाई, फसल नहीं चलती है, चलती क्या? क्योंकि जमीन पूरी वो आग में पूरा अपना जीव खत्म हो गए, केचुआ खाद पूरा खत्म हो गया, हुआ कि नहीं? कोई सत्व नहीं रहा, इसलिए खेत में जब भी आग नहीं लगाना है खेत को ढक के रखना है, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात है कि हमको जमीन को ढक के रखना, मतलब जमीन को फसल को आधी काट के पूरी ढक के रखना, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी बनी रहे खेत में, ये प्राकृतिक खेती का ही कांसेप्ट है, समझ आएगी नहीं? सब किसान के पास देसी गाय है ना, ये हमको करना है। अभी एक ड्रम खरीदा है और देसी गाय का गोमूत्र रह के 10 किलो, समझ में आएगी नहीं? आ गया कि नहीं समझ में आएगी? एक बार और सुन लो, सबसे पहले हमको 10 किलो गोबर, एक देसी गाय दिन भर में 10 किलो देती है, और 10 किलो गोमूत्र और 200 लीटर पानी और 2 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, उसमें ये क्यों डालते गुड़? हमको जीवों को मात्रा बढ़ाने के लिए गुड़ डालते और बेसन से वो खाते हैं तो वो उसकी मात्रा बढ़ती है, इसलिए बेसन मिलाते हैं और गुड़ को इसलिए मिलाते उसकी तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और इसको क्या 7-8 दिन तक डंडे से ऐसे हिलाते रहना, हिलाने बाद में हमको पंप में 100 ml डाल के उसमें जितना फसल के ऊपर, समझ आएगी नहीं। और ड्रिप है, ड्रिप के अंदर आपने बुन बुन में छोड़ दिया, सेंचुरी में डाल दिया पानी और वो ड्रिप पे चालू करा पानी चला जाएगा। तो ये हमारे बिगर पैसे की खेती है, इसको कहते हैं। हाँ हमें स्प्रे ऐसा है जिसको छानना है, जिस पंप जाम करेगा अपना भारी कपड़े या ये थे दादा साफा बयान रहेगा नहीं, इससे छान लो। छानने के बाद में पंप में 100 ml डालना है 15 लीटर पानी में, और बाकी का हमको कभी आपके पास ड्रिप लगी है तो सेंचुरी में पानी के मध्यम से यहाँ पौधों की जड़ों में जाएगा और उसकी जो बाद में निकलेगी है ना, वो उसको हमको जड़ों में पौधों में डालना है, बेड़ बना के, बेड़ बनी हुई है उसके ऊपर डालना है और पानी देते रहोगे तो आदमी चली जाएगी उसमें, ये हमको करना है। और हम पकड़ में आ गए, अगले साल से उसको बढ़ाते जाओ, एकदम हम गए कि पूरी खेती प्रकृति खेती करते तबाह आवाज नहीं है, है क्या गोबर की खाद किसी पास इतनी है क्या। तो ये धीरे धीरे हमको एक एकड़ की पूर्ति करते करते एकड़ दो एकड़ तीन एकड़ करेंगे, तब जाके हम किसान की लागत बिल्कुल कम होगी और खेती में सूक्ष्म तत्व की मात्रा बढ़ेगी। अभी आज के जमाने में हमने केमिकल का उपयोग कर करके जमीन में क्या कर दिया, कोई केचुआ खाद नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, हम चारा मारने की दवा का उपयोग कर रहे हैं, बिल्ली मारने की दवा का उपयोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं इसका, तो कहां से रहेगा केचुआ खाद, होगा केचुआ खाद, कोई नहीं, खत्म हो गया। जब हमारे हमने आज खाद की मात्रा को डाल डाल के जमीन को हमने कर दी कड़क, और आने वाले दिन में

रहा था। कितने लोगों ने जांच करवाई अभी तो बताओ। जब तक मिट्टी की जांच नहीं होगी तब तक हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे खेत में कौन सी तत्वों की मात्रा है, कौन सा ऑर्गेनिक का खाद है, कौन सी एनपीके है, डीएपी है, क्या है, अभी किसी को मालूम नहीं है। हम हमारे हिसाब से जाके दुकान पर जाके लाके ना कोई भी स्प्रे कर दे रहे, ये ऐसे नहीं होगा। हम जब तक अभी हम भी डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर अपने का चेहरा देख के थोड़ी बताता है क्या कि तुमको कौन सी बीमारी है। ऐसी जब तक हमको जमीन की मिट्टी की जांच कराओ और मिट्टी की जांच करने के बाद में फिर आपको रिपोर्ट बनेगी और आने वाले समय में आपको कौन सी फसल लगानी है वो होगी। पर अभी सबसे सही समय ही चल रहा है मिट्टी की जांच कराने का। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में भी है, कृषि विभाग में भी है, हमारे यहाँ 150 रुपए किसान का जमीन की जांच करते है, एक मिट्टी की खेत की 150 रुपए में जांच करते हैं। तो हम लोग आप लोग जांच करवाओ और उसमें हमको आने वाले समय में हम कौन सी फसल लगाएंगे वो फसल का नाम भी लिख के दे देना, तो उसका खाद भी लिख के देंगे, खाद भी लिख के देंगे कितनी मात्रा लगेगी, कौन सा खाद लगेगा, कौन सा खाद तत्व कमी है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जाँच होना चाहिए। कोई आदमी अपनी सब्जी भाजी की खेती कर रहा है, टमाटर की खेती कर रहा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है क्योंकि एनपीके तो हमारी अनाज वाली फसल होगी, बाकी के सूक्ष्म तत्वों के लिए हमको सब्जी भाजी खेती करने के लिए हमको पूरी मात्रा होनी चाहिए। किसान क्या करता है, सब कुछ खर्चा करता है लेकिन खेती में जांच नहीं कराता है। ये हमें अभी गर्मी में खेड़ने के पहले 5 स्थान का चयन करना है, सुन लो बात, वो मिट्टी कैसी लानी है, झाड़ के नीचे की नहीं लाना है, मेड़ के नीचे की नहीं लाना है, नाली के पानी के पास जाना वो वाली नहीं लाना है, हमको 5 तक 4 कोने और 1 बीच का वहां से थोड़े खेत में साफ सफाई पावड़े से करके और उसको इतनी जमीन में तो खोदना है और 5 ढेरों को इकट्ठी कर लेना है। ढेर करने के बाद में 1/2 किलो मिट्टी को लेके यहाँ ले आना और खेत का नाम, गाँव का नाम, किसान का नाम फिर आपकी जाँच कर लेंगे। 5 खेत की जाँच खेत होगी, 5 खेतों की अलग अलग मिट्टी लानी पड़ेगी। ये मिट्टी लाने के बाद में आपकी जांच करेंगे तो आपको पाएगा कि हमारे खेत में यूरिया की मात्रा है कि रोकड़िया खाद की मात्रा है कि पोटास की मात्रा है, तब मालूम पड़ेगा। हम अभी अपने हिसाब से किसानों के पास डाले कि नहीं, तो ये इसलिए आप किसान भाई अभी ये समय सबसे बढ़िया है, ये करना है। दूसरी बात है कि अभी समय खरीफ का आने वाला है तो हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि हमारा घर का बीज है उसका अंकुरण प्रतिशत देखना है। क्या करते हैं किसान, डायरेक्ट हमारे खेतों में से, घर में से, कोठी में से ले जाके खेत में बो देते हैं। बोने बाद में क्या कहते हैं, उगा नहीं आ रहा हमारा बीज सोयाबीन का, और सोयाबीन में सबसे बड़ी समस्या आ रही है आने वाले समय में। अभी भी अपने घर का बीज है उनका अंकुरण प्रतिशत देखना है, क्या देखना है, बीज उगा के देखना है, उसके 100 दानों को गिन लेना है और 100 दानों को एक लाइन में लगा देना है, 10-10 की लाइन बना के लगा देना है, उसमें से 70 पौधे उगे हमारा बीज सही है और 70 से कम होगा तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। समझ आएगी नहीं, 70 बीज हमारा 100 में से 70 बीज उगाया तो हमारा बीज सोयाबीन का सही है, और नहीं होगा तो कहना कि हमको बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यदि आपको 65 होगा तो आपको 10 किलो और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अभी हमारा गेहूं का सीजन नहीं है, अभी आएगा किसका, खरीफ का, तो सोयाबीन मूंग उड़द इनको हमको घर का बीज है उनका अंकुरण प्रतिशत देखना है। दूसरी बात है कि आप सोसाइटी से भी लाएं, हमको 10 दिन का समय मिलता है तो हम बीज को अंकुरण करके देखना है, अंकुरण करके इसलिए देखना है कि बीज उगरा कि नहीं उगरा है। देखो कभी बीज बाहर से भी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा सबसे बाहर से भी आता है, तो हमारे जैसे ट्रक में भर भर के आता है तो थप्पी 10-10 की लग जाती है, वो नीचे की थप्पी वाला गेहूं ये अपना सोयाबीन नहीं उगता है। देखा आपने, 4 छल्ली या 5 छल्ली सोयाबीन की लगाई तो नीचे की छल्ली के सोयाबीन 50% अंकुरण नहीं होता है, ये ध्यान रखना है सोयाबीन में। और जिसमें तेल की मात्रा रहती है वो बीज सबसे पहले खराब होता है अंकुरण में, बाकी के गेहूं चना इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ सोयाबीन मूंग उड़द में आती है, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी हमारा बीज को बोने से पहले उसको हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार 2 तरह का है, एक क्या है, ट्राइकोडर्मा भी है, थायरम भी है, बायोस्टिन भी है, मैंकोजेब भी है। हमको 1 किलो बीज के हिसाब से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमको डालना है। 2 समस्या तो होगी, एक तो हमारा बीज ज्यादा पानी होगा तो उसमें फफूंद नहीं लगेगी, सड़ेगी नहीं वो, और दूसरी बात है उसमें जर्मिनेशन बिल्कुल 100% होगा और बीमारी नहीं आएगी। तो ये हमको किसान को बीज बोने से पहले अंकुरण को देखना है, और दूसरी बात बीज में बीज उपचार करना है, ये विशेष ध्यान रखना है।
तभी हमारा किसान आगे जब बढ़ेगा। क्यों हम हर बार आप लोगों को बताते

0: किसान जब भी हमारी लागत कभी हिसाब बनाना सीख जाओगे, खेती जीरो है। किसान ने कभी आपने सोयाबीन से लगाकर आखिरी तक बोनी करी कटाई करी तब तक देखोगे तो कहीं नहीं मिलना मिला है। आज गेहूं का भूसा 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो ये चीज हमको बदलना पड़ेगी, समय समय पर हमको ये करना पड़ेगा तो हमको फायदा होगा, है ना? तभी हमारा किसान का लाभ मिलेगा। ये खेती की ये होना चाहिए। दूसरी बात है, खेती में हमको सभी धीरे धीरे सहायक धंधे के रूप में खेती को सभी जोड़ना पड़ेगा। आपको सब्जी भाजी की खेती करो, है ना, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, ये सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम जोड़ेंगे तो ही किसान आगे बढ़ेगा। इधर नुकसान हो जाएगा, इधर फायदा होगा, इधर नुकसान होगा, इधर फायदा होगा। तो ये आपको सब सब्जी भाजी की खेती भी करना है, फल फूल की खेती भी करना है, ये समय भी कीमत है। देखो अभी आज बाजार में जाएंगे नींबू कितने का, 20 रुपए का 3 दे रहे, 20 रुपए का 3 नींबू। आज यदि 5 पौधे आपके नींबू के हो जाते तो आपको सभी से फायदा हो जाता है। और क्या खर्चा है उसका, पौधा लगा दिया बस, उसके बाद में तो फल देता रहेगा। थोड़े दिन तक हमको सेवा करना, छोटा पौधा उसके पानी देते रहना, उसके बाद बड़ा करके हमको फल देगा वो। तो हमको नींबू की खेती करना, सरजना लगाना, ये खेती हम जब तक करेंगे किसान को तभी हमको फायदा होगा। धीरे धीरे हमको ऑर्गेनिक खेती पर बढ़ावा देना है। और अभी 2 एकड़ 3 एकड़ की जो बात कर रहा हूँ, एकदम हम पूरे 100% खेती ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। 1 एकड़ 1.5 एकड़ की खेती करनी है तो ये हमको करना है। दूसरी बात है, ये ऐसे खेती करोगे किसान तब फायदा है, होगा कि फायदा? ऑर्गेनिक खेती समझ में आएगी नहीं आपको? देखो, एक प्रकृति खेती, एक ऑर्गेनिक खेती, एक जीरो बजट खेती, ये दो सब में अंतर है। अंतर है कि नहीं? ऑर्गेनिक खेती में केचुआ खाद, गोबर की खाद सब फूल डालते हैं, पर प्रकृति खेती में गोबर की खाद नहीं डालते हैं, ये इसमें देसी गाय का करते हैं, समझ आएगी नहीं? और जैविक खेती जो हो रही थी उसमें केचुआ खाद वो डालते हैं, इसमें केचुआ खाद नहीं डालते, इसमें विदेशी गाय का गोबर खाद के उपयोग करते हैं। ये इसमें प्रकृति खेती में अंतर है और इसमें है। आप धीरे धीरे देखो, पहले जैविक खेती आई, अब ये प्रकृति खेती आई। प्रकृति खेती किसान को ये कह रहे, किसान का कुछ भी कोई पैसा खर्च नहीं होगा। भाई जैविक खेती जब करते थे तब हमको 25 ट्रैक्टर 40 ट्रैक्टर गोबर की खाद डालनी पड़ती थी। कहां से लाएं, किसान के पास गोबर की खाद नहीं है, तो उसको धीरे धीरे बंद करके प्रकृति खेती पर आए। और किसान का स्वयं का पैसा इसी में लगेगा, किसी से खरीदना नहीं है। तो ये प्रकृति खेती आई है, इसमें पैसा नहीं लगना है किसान को, और स्वयं हमारा खेती से ही उसका उपयोग करना है। तो ये प्रकृति खेती और जैविक खेती में अंतर है। अभी अभी आपने देखा होगा, लाइव कास्ट चलाता है अपना गुजरात का राज्यपाल और अपने यहाँ का राज्यपाल, उन्होंने पूरी हिस्ट्री सब करी, वो कम से कम उसके 25 एकड़ से ज्यादा खेती कर रहा है इसकी प्रकृति खेती पर। तो उनने गोबर की खाद की जांच करवाई, कहां पर, बड़ी लेब में, उसमें कहा कि गोबर देसी गाय की गोबर की खाद में ज्यादा जीव है, ये अपने सेवाल नस्लों में ज्यादा नस्ल है, थाईबार में इसमें है। तो उसने किसी को जांच करने भेजा, सुनो मेरे बात, गोबर की खाद की जांच करी है, इसमें क्या क्या तत्व है, 300 करोड़ जिसम गोबर की खाद में मिला है। कौन सी, उसने क्या करा, नाम नहीं बताया उसने, यहाँ से चिट्ठी बना के भेजी और ये 10-10 किलो की गोबर की खाद है, और उसमें लिख दिया, कोडिंग करके भेजिए, और वहाँ जांच करके आए कि गोबर की खाद कौन से देसी गाय में सबसे ज्यादा शुद्ध तत्व की मात्रा मिली। तो किसान को कह रहे कि देसी गाय पालो और उसका हमको दूध भी मिलेगा और हमारी प्रकृति खेती भी होगी, समझ में आएगी नहीं? तो हमको देसी गाय में सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो धीरे धीरे हमारा खेती में सबसे ज्यादा कमाना है, तो ये प्राकृतिक खेती करना पड़ेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन सर को, जिन्होंने हमें अभी बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, जो कि होती है जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जिसमें हमारा खर्चा कुछ भी नहीं होता है और घर पर रहकर ही किसान भाई अपना खाद बना सकते हैं। और साथ ही साथ हमें बताया कि मिट्टी का प्रशिक्षण करवाना चाहिए, समय समय पर मिट्टी की जाँच होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी खेती में कितनी उर्वरक शक्ति है। और साथ ही साथ हमें बताया बीजों के बारे में कि कौन से बीज कब उगेंगे और बीज का सही परख देखना और साथ ही साथ हमें पौधों के बारे में भी बताया कि हम किस प्रकार झाबुआ जिले में फलदार पौधे भी लगा सकते हैं और उसकी कमाई भी ले सकते हैं।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शुभ प्रभात दोस्तों, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।

आइए दोस्तों, 16 सुखों के बारे में बताता हूं। काफी सारे सुख तो हमने सुन ही रखे हैं, फिर भी जानिए क्या हैं ये 16 सुख। 16। पहला सुख, निरोगी काया, यानी कि हम बिल्कुल हेल्दी रहें। दूजा सुख, घर में हो माया। माया मतलब मनी से हो रही है बात, यहां पैसा, मनी, धन। तीजा सुख, कुलवंती नारी, हमारे घर की जो नारी हो वो कुलवंती हो तो पूरा घर खूबसूरत सुंदर बन जाता है। चौथा सुख, सुत आज्ञाकारी, मतलब हमारा बेटा हमारा कहना मानने वाला हो। पांचवां सुख, सदन हो अपना, अपना घर हो। छठा सुख, सिर कोई रण ना, कोई हमारे ऊपर उधारी ना हो, कोई ईएमआई ना हो, कोई लोन ना हो। सातवां सुख, चले व्यापार, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारी नौकरी अच्छी चले। आठवां सुख हो सबका प्यार, सभी से हमारा प्यार बना रहे। नौवां सुख हो भाई और बहन। दसवां सुख, न बैरी स्वजन हो, यानी कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त हमारे दुश्मन ना हो। ग्यारहवां, मित्र हितैषी सच्चा, हमारा फ्रेंड हमारा दोस्त हमारा सच्चा हितदार हो, हमारा भला चाहने वाला हो। बारहवां सुख, पड़ोसी अच्छा, आप समझ ही गए होंगे। तेरहवां सुख, उत्तम हो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई हमारी अच्छी हो। चौदहवां सुख, सदगुरु से दीक्षा, एक अच्छे टीचर से हमें शिक्षा मिले। पंद्रहवां सुख हो साधु समागम, साधु मतलब अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, उनके साथ बातचीत हो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। सोलहवां सुख, संतोष बसे मन, अपने मन में संतोष हो, बहुत ज्यादा छीन कर पाने की इच्छा ना हो तो इंसान सुखी ही रहता है। 16 सुख ये होते हैं भाविक जन, जो पावे सोई धन्य हो जीवन। यही 16 सुख अगर हमें मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। हालांकि आज के समय में ये सभी सुख दोस्तों हर किसी को मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन इनमें से जितने भी मिल जाएं उससे खुश रहने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना दोस्तों, क्यों? तो याद रखिएगा ये 16 सुख, और इनमें से जितने हो सके उनको अपनाने की कोशिश करें।

दोस्तों, हम जिंदगी में चलते चलाते सभी के बारे में राय बनाते रहते हैं। कभी कभी ये राय बड़ी खोखली भी हो सकती है। हम गलत सोच सकते हैं किसी के बारे में। आइए इसी से संबंधित आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, आपके बात समझ में आ जाएगी। चलिए मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे थे, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए बस यूं ही खड़े हो जाते हैं। पसीना पहुंचते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से अपने को हवा करने की कोशिश करते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक आदमी से आंखें मिलती हैं। आपकी ऐसी स्थिति देखकर वो आदमी हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपने फौरन उस आदमी के लिए एक राय बनाई। बड़ा ही सहृदय व्यक्ति है, न जान न पहचान, फिर भी पानी के लिए पूछ रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए आपकी ये पहली राय है, क्यों? अब वो आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर लेता है। आप पानी लेने तेज कदमों से उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस आदमी के बारे में आपकी क्या राय है भाई? आप उसे गालियां देने लग जाते हो, क्यों? बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, ढीला है, आलसी है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हो उसको आप। अब ये आपकी दूसरी राय है, देखिए। लेकिन थोड़ी सी देर बाद दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, उसे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए बहुत बहुत खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर उसने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना जरा ज्यादा अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब आपकी क्या राय है? कितना अच्छा आदमी है ये, कितना सोचा उसने मेरे बारे में। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि शरबत में चीनी तो है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय बनाना चाहते हैं आप? अरे यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, नालायक है, बेहद कंजूस भी है। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उस समय उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी ले आया, जिससे आप जितनी चाहें उतनी डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है आपका? है ना मजेदार? अब आप मनन कीजिए, एक सामान्य स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली हो जाती है और लगातार बदलती जा रही है, तो क्या हम किसी के बारे में भी राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से राय ना बनाएं। पता नहीं कौन किस परिस्थिति या स्थिति में ऐसा काम कर रहा है, अब ये तो वही बेहतर जानता होगा ना। हो सकता है अपनी अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और दूसरा भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को बस इतना सा समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। क्यों दोस्तों, बात में दम है ना? सोचिएगा। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

आइए दोस्तों, आज बात करते हैं अपने से, खुद से बात करने की। ये बात बड़ी अजीब सी लग सकती है आपको, लेकिन गौर कीजिए, आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना। मोबाइल का एक और इस्तेमाल करके देखिए। अपना नंबर तो आपको याद ही होगा, एक बार जरा अपना नंबर अपने ही मोबाइल से डायल करके जरा देखिए तो सही, क्या आवाज आती है। देखिए देखिए, कोशिश कीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं देख रहा। जी हां, इंगेज टोन, व्यस्त टोन आती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने फोन से अपने आप से ही बात नहीं कर सकते। फोन तो दरअसल दूसरों से बात करने के लिए है ना, और बस हम उसी में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अपने से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने से बात करते हैं तो हम अपने आप को विकसित करने में लग जाते हैं। हम में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की भावना बढ़ने लगती है, साथ ही हमारे सोचने की क्षमता बढ़ती है, और वो परेशानियों और परिस्थितियों से निपटने में हमारी मदद करने लग जाते हैं। ये चीज हमें भविष्य में भी बहुत मददगार साबित होती है। अब देखिए, जो लोग खुद से बातें करते हैं वो अपने विचारों को बहुत साफ तरीके से बोल भी पाते हैं। अपने विचारों को मन ही मन बोलकर हम बहुत ही आसान शब्दों में कहना भी सीख जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखना सीखते हैं, वो भी बिना डरे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम खुद से बात करते हैं तो हम एक बड़े मिलनसार व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि भविष्य में किसी भी अन्य व्यक्ति से आराम से बात की जा सकती है। अगर हम खुद से बात करते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को भी समझने में हमें मदद मिलती है, यानी कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, हम सोच पाते हैं। अगर हम खुद से बातें करते हैं दोस्तों, तो अपने ऊपर नियंत्रण करना भी हम सीखते हैं। जब हम अपने ही विचारों को अपने साथ साझा करते हैं तो पहले तो एनालिसिस के जरिए हम क्या गलत सोच रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, साफ हो जाता है। हमारा मन खुद ही उन गलत विचारों को रिज

रिजेक्ट कर देता है, निकाल फेंकता है, क्योंकि उसे पता है क्या सही क्या गलत। दोस्तों, अपने से बात करना सीखिए। बहुत सुंदर हैं आप, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप। मिलिए तो उससे, बात तो करिए, वो कुछ कहना चाहता है आपसे, सुनिए तो उसकी। हर समय चारों तरफ तमाम चीजों के साथ उलझे मत रहिए। ईश्वर ने आपको एक आप दिया है, बहुत ही सुंदर आप, उसके साथ कुछ वक्त गुजारिए। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

आइए दोस्तों बताता हूं, ये कुछ काम भी देशभक्ति की ही मिसाल है। आज सुबह जैसे ही उसने उठकर बाहर झांका, उसे कुछ समझ नहीं आया। गली में कितना कचरा जमा था, कितनी बदबू आ रही थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उधर कब से नल बहा जा रहा है। अपना घड़ा भर जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए ना, बाकी लोगों को भी तो प्यास लगती है। कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन नल खुला छोड़कर बस चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि इन छोटी छोटी बातों से कितना नुकसान होता है। कुछ लोग सड़क पर टेंट लगा देते हैं और गड्ढा भी खोद देते हैं। अरे भाई, इस सड़क निर्माण में करोड़ों रुपया का खर्च आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। घर से बाहर निकल आया, बगीचे में गया, हरे भरे पेड़ों से बातें करने लगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, बच्चे झूल रहे थे, लोग टहल रहे थे और कुछ व्यायाम भी कर रहे थे। इस खूबसूरत माहौल को देखकर वो सोचने लगा, इस बगिया की तरह ये दुनिया भी बड़ी खूबसूरत है, पर कुछ लोगों की नादानी की वजह से थोड़ा बिगड़ जाती है। तभी उसने देखा कि एक जगह कचरा बिखरा पड़ा था। कुछ लोग नमकीन के खाली पैकेट बिखेर कर चले गए। उसने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। वो बगीचे से बाहर आ गया। सामने रेलवे स्टेशन था। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर ये क्या, इधर धक्का मुक्की कैसी। देखा तो लोग टिकट के लिए लड़ रहे थे। उसने सुरक्षा कर्मी से बात की, उसके आने पर सब व्यवस्थित हो गया। काफी देर हो गई, वो सड़क से चलते हुए घर आ रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे काफी चोट आई, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। वो एक टैक्सी वाले की मदद से उसको अस्पताल ले गया। एक अखबार वाले ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, लोग तो समस्याओं से किनारा करके निकल जाते हैं, लेकिन आप उनसे जूझने में लग जाते हो, आपको क्या मिलता है। वो बोला, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसलिए हमें इसे जूझने में संकोच कैसा। देखने में ये छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन इनका संबंध सीधा देश से है। सीमा पर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, कोई बड़ा आंदोलन करना भी देशभक्ति नहीं है। नेता बन गए तो क्या, जब देश के लिए कुछ किया ही नहीं। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने आसपास को स्वच्छ रखना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, चाहे वो पानी हो या पैसा, अन्न हो या बिजली। ऐसा करके हम जाने अनजाने अपने देश के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। ऐसा करके हम बहुत बड़ी देशभक्ति का परिचय देते हैं। दोस्तों, बात में तो दम है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

25 साल के एक नौजवान ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हाल ही में ये खबर पढ़ी, मन बहुत दुखी हुआ। ये नौजवान आईआईटी आईएम ग्रेजुएट था, जानी मानी एमएनसी कंपनी में काम किया करता था। उसके दोस्त कहते हैं कि बड़ा ही सुशील और समझदार लड़का था। फिर ऐसा क्या हो गया? कहा जा रहा है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा था, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। आईआईटी और आईआईएम के पास ग्रेजुएट पर दबाव बहुत ज्यादा था, सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है ना। शायद सीनियर्स ने कुछ परेशान किया हो, हो सकता है उसकी जॉब खतरे में हो। अब सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इसके नीचे सोचने की जरूर जरूरत है दोस्तों। हर स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं आईआईटी या आईआईएम में पहुंच जाऊं तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। अब जिसे दोनों में एडमिशन मिल गया हो उसका तो कहना ही क्या। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आईआईटी और आईआईएम के अंदर भी भयंकर कंपटीशन है, खास करके नौकरियां पाने के लिए। मोटे मोटे पैकेजेस, पैसा ही पैसा, लेकिन मिलता कितने लोगों को है? और अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या होता है? पढ़ाई में अव्वल आना एक बात है और बाहर की दुनिया में जो होता है वो कुछ और। कंपनी में काम करते समय सिर्फ दिमाग नहीं, सोशल स्किल्स भी काम आते हैं। आप कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ये भी जरूरी होता है ना दोस्तों। अकेले आप कुछ नहीं करते, लोगों के साथ चलना ही पड़ता है। कुछ लोग काम बड़ी ईमानदारी से और गंभीरता से करते हैं, लेकिन उसका यश, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसा भी होता है कि जो बंदा पढ़ाई में अव्वल था प्रैक्टिकल लाइफ में फिसड्डी हो जाता है। जिंदगी भर टॉप आने वाले जब फेलियर का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, तो एकदम हिल जाते हैं, क्योंकि आज तक तो ये एहसास हुआ ही नहीं था ना। अपने ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है और शर्मिंदगी भी बहुत होती है। ऐसे में क्या चाहिए आपको? एक अच्छा सच्चा दोस्त जिसके साथ आप दुख दर्द बांट सकें, बिना हिचकिचाहट, बिना झूठ फरेब के कुछ कह सकें। हर कोई समझता है कि मेरे जैसा दुखी इंसान तो कोई है ही नहीं। एक बार किसी से दिल खोलकर बात करके तो देखिए, वो भी अपनी राम कहानी सुना डालेगा। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसके पास घर में शांति नहीं है, जहां परिवार मिलजुल कर रहता है वहां सेहत नहीं है। जिसका शरीर A1 उसको रुपयों की किल्लत होती है। किसी की जिंदगी में एक ही समय पर सारे सुख होते तो नहीं। कोई तो संघर्ष आपको करना होगा, तो फिर उससे आंख मिलाकर क्यों ना कहें, चला जा, मुझे मंजूर है। अगर कोई फेल हो जाता है तो बड़ी निराशा होती है। दो चार बार हारना भी देखिए जरूरी है। कैरेक्टर कैसे बनता है बस इन्हीं हालातों में। एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, 12th फेल, अगर उसी का नाम 12th पास हो जाता तो पिक्चर में वो दम नहीं होता, दर्शकों से वो प्यार नहीं मिलता उस फिल्म को। लेकिन अपनी जीवन की पटकथा में हम चाहते हैं सीधी सीधी लाइन, KG से PG, अच्छी नौकरी,

जरूरत नहीं है। दोस्त ढूंढिए जिसके सामने अपना सब कुछ कहा जा सके। जिंदगी में सफलता ही सब कुछ नहीं है दोस्तों। ईसीजी मशीन की ऊपर नीचे गिरती हुई चढ़ती हुई लाइनों को हमेशा याद रखें। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

तो दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।

बिना पाठ्यक्रम वाले जीवन की गणित। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, बस किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं। आज मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा मैथ्स की क्लास में टीचर से पूछता है, सर बीज गणित में बीज कहाँ होता है? टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरा हाथ खोलो। और जब बच्चा अपने लाल हाथों वाली हथेली आगे करता है तो उसे समझ आता है, बीज दिया जा चुका था, दिखता नहीं था पर था। बस वही पल जिंदगी का पहला बड़ा लेसन बन जाता है। हम सब जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं, रिजल्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है। हम ये भूल जाते हैं कि बीज हमेशा जिंदगी के नीचे होता है, वह अंधेरा होता है, इंतजार होता है और सबसे बड़ी बात सब्र होता है। ये संवाद ये कहना चाहता है कि हर चीज को ज्यादा सोचना जरूरी नहीं होता। हर बात का जवाब ढूंढने से पहले कभी कभी चिंतन छोड़ देना भी जरूरी है। जिंदगी की गणित कुछ ऐसी ही है, ये फॉर्मूला से नहीं एक्सपीरियंस से समझ आती है। सोचिए, हवा दिखती नहीं पर चलती तो हमेशा है, इज्जत दिखती नहीं पर जब चली जाए तो वो घर के रिश्ते भी हिला जाती है, विश्वास दिखता नहीं पर बिना उसके कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता, और भगवान वो भी नहीं दिखते पर उन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये संवाद भी यही कहता है, जैसे एग्जाम्स में कभी कभी बिना असल समझ के लंबे आंसर्स लिखकर नंबर आ जाते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी हम सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं, पर फर्क इतना सा होता है, एग्जाम के मार्क्स जिंदगी नहीं बदलते पर जिंदगी के बीज बदलते हैं। अगर बीज असली हो, मेहनत का, ईमानदारी का, पेशेंस का, तो फल भी असली होता है, चाहे थोड़ा लेट ही आए पर जब आता है तो गहरा होता है, टिकाऊ होता है। इस संवाद का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा विद्यमान होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपका बीज अभी जमीन के नीचे है। जिंदगी की गणित ना रटी जा सकती है ना शॉर्टकट से सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और कभी लगे कि कुछ दिख नहीं रहा तो बस इतना याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं और वही चीजें जिंदगी चलाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है सिंटू?
2: सिंटू ने जवाब दिया,
1: यार एक दुकान खोली थी उसने, लेकिन अब वो जेल में है।
2: पिंटू,
1: ओ पर ऐसा क्यों हो गया?
2: सिंटू, भाई ने दुकान हथौड़े से खोली थी, उसे पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया। What?

दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने आप में ही एक मेटाफर। एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। ये कहानी है लेखिका अर्पणा की, जिनकी कहानियों में गहरापन है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी संजीदगी है जो दिल को छू लेती है। इस कहानी का केंद्र है एक औरत, उसका घर, उसकी तन्हाई और उसका डर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सरकारी मकान से। आंगन में एक तुलसी का पौधा है, जो बस पौधा नहीं बल्कि यादों का प्रतीक है। नरेटर बताती है कि वो उस तुलसी की पूजा नहीं करती, पर चाय में उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये छोटी सी बात ही कहानी का टोन सेट कर देती है, परंपरा और व्यवहार के बीच का अंतर। उसका रिश्ता आरएस हांडे से भी तुलसी की जैसा ही है, ना पूरी तरह पवित्र ना पूरी तरह सामान्य, एक अजीब सी जटिलता। घर के सामने एक बुढ़ा रहता है, अकेला। नरेटर अक्सर उसे देखती है। एक दिन वो सोचती है, क्या मैं भी बुढ़ी होके ऐसी ही अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी कहानी भी इसी तरह खत्म होगी? यहाँ कहानी तन्हाई का साइकोलॉजिकल लेयर खोलती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम नरेटर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक साया, एक डर। वो दौड़ती है, साया भी दौड़ता है, उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है और अब वो पकड़ी जाती है। तो पता चलता है कि वो साया असल में उसका अपना ही डर था, या शायद उसी की परछाई। ये पल सिंबॉलिक है। कहानी ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने ही अंधेरों से भाग रहे होते हैं, अपने ही सवालों से, अपनी ही असुरक्षा से। और फिर आता है सबसे पावरफुल इमेज, दरवाजे। नरेटर एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। जैसे जिंदगी में हर प्रॉब्लम के बाद एक नया चैलेंज, हर सच के बाद एक और नया सच, और हर डर के बाद एक और गहरा डर। दरवाजों की एक लंबी कतार। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी लीनियर नहीं होती, एक रूम नहीं, एक कॉरिडोर में नहीं होती, जहां हर दरवाजा खोलने की हिम्मत चाहिए। हर दरवाजे के बाद जो मिलता है वो हमें थोड़ा और मैच्योर कर देता है, थोड़ा और तोड़ता है, थोड़ा और बनाता है। इसमें राजनीतिक संकेत भी है, सामाजिक तंगीत भी है, और सबसे गहरा एक औरत का अस्तित्व संघर्ष है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में एक दरवाजे पर रुक सकते हैं, या जिंदगी का नियम ही है एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। और शायद हिम्मत का मतलब यही है, दरवाजे खोलते रहना।

0: देखेंगे
1: कैसी फिक्र
0: कैसा डर
1: दुश्मनों के
0: खिले सर
1: आगे बढ़ दुश्मनों पे
0: सुर पर
1: जा पे अपनी खेलेंगे
0: हर मुश्किल को झेलेंगे
1: क्या होगा ना सोचेंगे
0: हम मंजिल पे पहुंचेंगे
1: कर फिदा
0: जान को
1: मार ले
0: मैदान को
1: रोक ले
0: आंधिया
1: मोड़ दे
0: तूफान को
1: हिम्मत कभी न तोड़ेंगे
0: दुश्मन को ना छोड़ेंगे
1: घुटने

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चीनू उदास बैठा था, तभी मीनू आया और पूछा, क्या हुआ चीनू, तू उदास क्यों बैठा है? चीनू बोला, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे पिछले 5 दिन से बैठा हूँ, ना तो शीतल आई ना ही छाया।

0: थैंक यू।
1: शरीर पर चिन्ह भी होते हैं पहचान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ शरीर पर बना हुआ डिजाइन नहीं बल्कि पहचान, आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। गोदना यानी ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटूइंग। इस चर्चा में बताया गया है कि देश के कई आदिवासी समुदायों ने शरीर पर बनाए गए चिन्ह सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के गोंद, बैगा, भील, कोरकू, मुरिया, कोल जैसे कई जनजाति समुदाय में गोंदना एक प्राचीन परंपरा है। इन समुदायों के लिए गोंदना उनकी पहचान है, एक जीवन भर का साथी। कुछ जगह देवी देवताओं का चिन्ह, पेड़ पौधों के आकार, प्राणियों के प्राकृतिक सूरज चांद तारे या पवित्र निशान शरीर पर गुदवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इस आर्टिकल में एक लोक कथा का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भोज में जब एक जनजाति के लोगों को पहचान के लिए अलग किया गया तब से गोंदना उनकी पहचान बन गया। यानी ये परंपरा केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न थी। आदिवासी समुदायों में लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद गोंदना गुंदवाना आवश्यक माना जाता था। ये शादी, जवानी और सामाजिक स्वीकृति का जुड़ाव है। कई संस्थानों पर यह भी विश्वास किया गया कि मरने के बाद सिर्फ गोंदना ही साथ जाता है, सोना चांदी कपड़े ये सब यहीं रह जाते हैं। गोंदना करने की ये प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है। सुइयों को बांधकर रंग भरा जाता है जो काजल, तेल या प्राकृतिक रंगों से तैयार होता है। दर्द होता है लेकिन उसे सहना परंपरा का हिस्सा है। कुछ स्थानों पर गोंदने के दौरान गीत भी गाए जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। महिलाओं के लिए गोंदना एक जीवित आभूषण जैसा माना जाता है, ऐसा गहना जो कभी नहीं उतारा जाता। आज के समय में जब मॉडर्न टैटू फैशन का हिस्सा बन चुका है, ये संवाद हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में टैटू सिर्फ फैशन नहीं था, ये इतिहास, धर्म, परंपरा और पहचान का प्रतीक था। ये शरीर पर सिर्फ बना एक चिन्ह नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ और मेरी जड़ें कहाँ हैं? आखिर में ये संवाद एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी परंपराओं को समझ पा रहे हैं या उन्हें सिर्फ फैशन तक सीमित करते हैं? क्योंकि कभी कभी पहचान कपड़ों से नहीं शरीर पर बने चिन्हों से होती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू बोला, यार मैंने आज बहुत काम कर लिया। उसके दोस्त संजू ने पूछा, कैसा काम भाई? तो पिंटू बोला, वही जो स्कूल में टीचर मना करती है। संजू पूछा, मतलब? पिंटू बोला, अरे सवाल पूछना।
2: संजना,
0: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

दोस्तों, दुनिया में गेम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही हम हैरान रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखे खेल की, रबर बूट थ्रोइंग। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये सच में एक सीरियस स्पोर्ट है। ये खेल फिनलैंड से शुरू हुआ 1992 में। शुरुआत में लोग इसे मजाक या मनोरंजन के रूप में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन गया और आज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। इस गेम का बेसिक आइडिया सिंपल है, रबर के बूट को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। लेकिन दूर फेंकना ही काफी नहीं है, इसमें टेक्निक, बैलेंस और पावर, ये सही कॉम्बिनेशन में जरूरी है। बिल्कुल जैसे हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है, वैसे ही रबर बूट थ्रोइंग में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर मोमेंटम क्रिएट करके बूट को फेंकता है। देखने में सिंपल है, लेकिन असल में काफी चैलेंजिंग है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टिसिपेंट को निर्धारित वेट और साइज का बूट दिया जाता है। कंपटीशन में सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल की इंटरनेशनल पहचान भी है, इंटरनेशनल बूट थ्रोइंग एसोसिएशन के थ्रू। इमेजिन, फिनलैंड के अलावा कई और देशों में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। आज सिर्फ ये एक लोकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि फिनलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ सीरियस और ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स तक सीमित नहीं होते, कभी कभी क्रिएटिविटी और मजाक से भी एक नई परंपरा बन जाती है। सोचिए, एक सिंपल सा रबर बूट जो आमतौर पर बारिश या खेत में काम आता है, वही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनकर सेंटर बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से गेम का नाम सुने, हो सकता है वो सिर्फ गेम ना हो, बल्कि किसी देश की सोच, क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी रबर बूट को तोड़ना भी एक गेम ही होता है।